0: हाँ साहब,
1: आवाज। आंख रो रो के तलब करती है रहमत तेरी, दिल धड़कता है तो आती है यही एक आवाज। आवाज समझ फरमाए।
0: क्या आवाज?

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
2: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
3: FM247365
4: Let's celebrate
5: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on Facebook.com/FM247365. FM247365.

0: इंतजार कीजिए।
1: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
2: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Cool King.
3: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
4: हम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
5: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी.
6: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन. 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी जानदार बनाए हर मैच को शानदार. पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड. 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं. हायर मोर क्रिएशन मोर पॉसिबिलिटीज.
7: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
8: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
9: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2500.
10: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें. प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात.
9: दुनी दो दो दुनी चार दुनी दो दो दुनी चार.
11: इंट्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
12: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता. हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी. हायर T3 एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर.
13: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी. जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से. तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना.
8: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
14: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
15: MCB 1 Current Account. Har Pakistani ka ek account. जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ. तो आज ही MCB 1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं. MCB बैंक फॉर लाइफ.
10: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है. अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका. बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना.
11: शराय तो जवाबित लागू है.
0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
5: And Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
8: And Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator. Twin Inverter Technology. Jisse mile maximum cooling. Aur energy saving. No frost, no worries.
12: And Hire T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat.
16: हायर
17: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
18: एंड लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके
19: एंड
20: MCB बैंक फॉर लाइफ
19: एंड
18: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
19: एंड

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता. हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी. हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर.
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
0: This program is brought to you by
4: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
0: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC. And
2: Higher Ka Naya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling or Energy Saving. No Frost, No Worries.
0: And
1: Higher T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat.
0: And
5: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: एंड
6: लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके.
0: एंड
7: MCB बैंक फॉर लाइफ.
0: एंड
8: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विथ योर डॉक्टर टुडे.
0: एंड

facebook.com/FM247365 FM 247365

0: ट्यूबलेट दिखाए कहाँ, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: हायर मिनी LED टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144 Hz पिक्चर क्वालिटी जानदार, बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ फ्री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
2: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
3: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर AC अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100

0: 50% कूलिंग एफिशिएंसी, 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
1: एक दुनी दो दो दुनी सही इंतखाब के इनामात 2500।
2: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
3: इंट्रोसिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
4: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: तुम कभी ना झुके मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
7: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
8: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
9: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
10: MCB1 Current Account. Har Pakistani ka ek account. जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।

0: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
1: शराय तो जवाबित लागू है।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: AGS ट्यूबलेट, दिखाए काम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
4: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
5: एंड हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: एंड
6: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
0: एंड अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले।
4: एंड
7: लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: एंड
8: MCB Bank for life.
4: And
9: live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
4: And

us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga
1: aur bhul ja. Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी, 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर.
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से. तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना.
3: नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
4: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, No Worries.
5: Jazz Cash ke saath pao 1 crore jeetne ka shandar mauka. April aur May miss ho gaya? To tension kaisi? Mauka abhi bhi baki hai. Apne Jazz Cash account mein 50,000 ya zyada ka balance maintain karo aur pao bumper prize jeetne ka mauka. बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना.
6: शराय तो जवाबित लागू हैं.

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
3: and Hire Ka Naya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling or Energy Saving, No Frost, No Worries,
2: and
4: Hire T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat.
2: And
5: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
2: एंड
3: लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके
2: एंड
6: MCB बैंक फॉर लाइफ
2: एंड
7: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
2: एंड

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अजमे इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान।
1: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
4: हमने आप नाम से 3 बार मौत देखे
5: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूँ कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
6: फिर उन्होंने साड़िया वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
3: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
7: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था, वर्क वीजा।
3: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम, मुलगीर क्रैकडाउन जारी। एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100। लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
8: FM247365। किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
9: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाए।
8: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
10: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
11: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
8: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
10: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
11: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
10: अभी इसी वक्त अप अपना BMI चेक करवाइए,
8: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
9: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
8: आइए वेट से आगे का सोचें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Cool King. Chai hotel mein baithe ho. Chai garam, mausam garam. Aur discussion usse bhi zyada garam. Politics ho ya cricket, sabka temperature high. Lagao Cool King Hair Oil aur cool ho jao. Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
3: Hire Mini LED TV ke saath 3 mahine ki tap mag subscription bhi with free installation 144Hz picture quality jandar banaye har match ko shandar powerful KEF British speakers aur woofers ka amazing sound kare aapko excitement se surround 3 year warranty aur 6 month re replacement ke saath aaj hi Hire Mini LED TV line aur stadium ka mahol ghar mein banaye. Hire more creation, more possibilities.
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा
5: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हायर T3 एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर
6: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात ढाई हजार
7: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ ढाई हजार से ज्यादा इनामात
6: दुनी दो दो दुनी चार दुनी दो
8: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
9: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
10: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी जैसे FPR टैक्स ट्रैफिक चालान पासपोर्ट फी गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी घर बैठे जैस कैश से तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना

0: control, no trust, no worries.
1: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
2: Tum kabhi na jhuki, magar is wazan ke aage tumhare jism ne hi tumhe thakaya. तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है. हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया.
3: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
4: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
5: जैश कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है. अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका. बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना.
6: शराय तो जवाबित लागू है.
7: This program is brought to you by
8: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
9: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
10: and Hire Ka Naya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling, or Energy Saving, No Frost, No Worries,
11: and Hire T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat.
12: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले.
13: एंड लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके.
14: एंड MCB बैंक फॉर लाइफ.
15: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
16: एंड तूफान है हर जीत की पहचान है.
17: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा.
18: एंड आज ही हायर मिनी LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं.
19: FM 247 365.
20: Let's celebrate
21: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
22: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी, 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
4: किसने कहा था पैसे

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
0: and
2: Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and
3: Hire Ka Naya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling, or Energy Saving, No Frost, No Worries,
0: and
4: Hire T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat.
0: And
5: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले
0: एंड
6: लाइफबॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके
0: एंड
7: MCB बैंक फॉर लाइफ
0: एंड
8: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
0: एंड
9: तूफान है हर जीत की पहचान है
0: एंड
10: फिनिक्स लगा और भूल जा
0: And
11: आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं
12: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
13: FM 247365 100 FM.
14: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
15: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا

0: मेरा आराम, AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
2: कूल किंग।
3: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
2: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: हायर मिनी LED टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैग सब्सक्रिप्शन भी, विद फ्री इंस्टॉलेशन, 144 Hz पिक्चर क्वालिटी, जानदार बनाए हर मैच को शानदार, पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड, करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ फ्री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
5: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
8: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
9: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
6: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर,

0: जी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल, नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बंद।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: तुम कभी ना झुकी, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
3: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
4: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
5: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.

0: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
1: शराय तो जवाबित लागू है।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी दिल को है आराम,
4: एंड कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी,
5: एंड हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग, नो फ्रॉस्ट नो वरीज,
6: एंड हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर।
0: एंड अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
6: एंड लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: एंड MCB बैंक फॉर लाइफ।
6: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
4: एंड
7: तूफान है, हर जीत की पहचान है।
4: एंड
7: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
4: एंड
8: आज ही हायर मिनी LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
9: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: FM 100 traffic update.
1: अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एफएम 100 ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूं फारूक हजार। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की इस वक्त सूरत हाल के जिस तरह है, बारमेर गेट से वो तमाम ट्रैफिक जो इस वक्त जा रहा है एयरपोर्ट और वहां से नापाखान भीड़ की जा रही, दरमियानी रास्ते पर ट्रैफिक का बहुत ज्यादा दबाव है, गाड़ियां बंपर से बंपर यूज कर रही है, तो तमाम लोग जो सारा फैसल के ट्रैक से सफर करना चाहते हैं ट्रैफिक की सूरत हाल से आगा रहे। इसके साथ साथ एफएम 100 की मिलने वाली इतला के मुताबिक अभी बैंक चौरंगी से सिमेंस चौरंगी और वहां से गुलबाई की जाने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक का इसका दबाव बढ़ गया है और गाड़ियां स्लो मूव कर रही है, लिहाजा अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि घर पर मंजिलों से पहुंच सके। मंजिल अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए एफएम 100।
0: This traffic update was brought to you by FM 100.

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी, 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर.
3: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
4: Higher ka naya No Frost IoT Refrigerator jiska multi-airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No Frost, no worries.
5: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से. तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना.
4: No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
6: Jazz Cash ke saath pao 1 crore jeetne ka shandar mauka. April aur May miss ho gaya? To tension kaisi? Mauka abhi bhi baki hai. अपने जैज कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका. बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना.
7: शराय तो जवाबित लागू हैं.

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC.
3: And Hire Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling or Energy Saving, No Frost, No Worries.
2: And
4: Hire T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat.
2: And
5: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
2: And
3: Lifebuoy एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके.
2: And
6: MCB बैंक फॉर लाइफ.
2: And
4: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
2: And
7: तूफान है
2: And
8: आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं.
9: खवातीनों हजरात, मंशियात वो जहर कातिल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जबकि जहर हमारी रगों में साहित कर चुका होता है. भक्ति सुरूर और मजे का लिबादा उड़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है. मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोहबत है जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं जबकि दरअसल इस अमल का ताना बाना बुरी सोहबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है. घर देर से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है. खुदा रा अपने बच्चों पे नजरें रखे ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके. हमारा आज़म एक कौम, एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान.
10: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां
1: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
3: किसने कहा था पैसे

0: This program is brought to you by Aji, Higher Mini LED TV Line और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ है 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।

0: This program is brought to you by RG, Higher Mini LED TV Line और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: यहाँ पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: FM 247 365 FM 247 365

0: 247-365. FM 247-365. FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

to the lunchtime special on the big one, FM 100.

यस माय फ्रेंड्स, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज। और अब जबकि आगाज हो ही चुका है तो भाई तरीकाकार बताने में मुझे लगता है कि किसी किस्म की देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जल्दी से आपको बता देना चाहिए कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। तो भाई इस तरीकेकार को जल्दी से फॉलो कर लें और बन जाएं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। तो जरूर हमें बताएं कि आप सबकी जिंदगानी जो है वो कैसी चल रही है, क्या हाल है वाल है, एनीथिंग न्यू या फिर वही पुरानी जिंदगानी। लेकिन आई थिंक द गुड थिंग इज दैट कि मौसम बड़ा अच्छा चल रहा है इस वक्त शहर कराची का, और मैं तो ये कहूंगी कि बस अल्लाह पाक इस मौसम को नजर बच से बचाए, ऐसे ही मौसम चलता रहे, क्योंकि ये मौसम जो है उस वक्त बड़ा ही जबरदस्त किस्म का लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा पीसफुल आप जो है ना वो टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। शायद आपको याद हो कि लास्ट ट्यूजडे वाले दिन मैंने आपको इत्तला भी दी थी कि फिलहाल अभी कोई अनकरीबी हीट वेव की भी पेशनगोई नहीं है अभी तक के लिए। तो अच्छी बात यह है कि अभी मौसम ऐसे ही अबर आलूद रहेगा। वैसे बारिश की पेशन गोई थी, शदीद बारिश की, मतलब अच्छी गरज चमक के साथ बारिश की सिंध के मुख्तलिफ शहरों में। लेकिन इस खबर में भी जो मजे की खबर थी ना वो ये थी कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तो बारिश की पेशन गोई मौजूद है, लेकिन जो पेशन गोई मौजूद नहीं है वो सिर्फ कराची में नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हम कराची वालों को बारिश की नहीं बस एक अच्छे मौसम का इंतजार है, बारिश हो ना हो लेकिन मौसम जरा अबर आलूद रहे तो भाई मजा ही आ जाए। सो आई थिंक वी ऑल आर हैप्पी। तो भाई कैसी चल रही है आप लोगों की जिंदगानी? आज है 18 जून, तो आज अगर किसी की सालगिरह है तो हम आपको हैप्पी बर्थडे टू यू कहना चाहेंगे कि भाई आपको आपकी सालगिरह का दिन बहुत मुबारक। और उसी के साथ साथ आज कौन कौन से दिन मनाए जा रहे हैं इस पर भी होगा जिक्र, क्योंकि इस पर तो हम रोजाना की बुनियाद पर लाजमी बात करते हैं। तो डील डन है, इस पर भी होगी बात, करेंगे आपसे मजीद खूब सारी बातें। और इससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि ट्रैक की जानब जाया जाए या फिर क्या किया जाए। आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। तो चलें जी एक और ट्रैक की जानेब हम चलते हैं और आते हैं वापस ट्रैक के बाद और अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाते हैं हम आगे आफ्टर दिस ट्रैक।

Yes, my friends. तो भाई आज जिस किसी की भी सालगिरह है वो तो आपको बहुत मुबारक हो ही हो, और उसी के साथ साथ अगर कोई और खास दिन भी है आपकी जिंदगानी का तो हम आपको उस दिन की भी मुबारकबाद देते हैं कि आपका वो दिन बड़ा खास गुजरे और बहुत सारे दिनों से बड़ी आपकी यादें जुड़ी होती हैं इसलिए भी वो दिन आपको याद रहते हैं, और अक्सर औकात कभी कभी बैठे बिठाए फारिग वक्त में भी आपको वो बातें याद आती हैं, वो दिन याद आते हैं जो आपके बड़े अच्छे होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ना उस दिन जैसे मजीद दिनों को प्लान करना चाहते हैं कि भाई जैसे वो एक यादगार दिन रहा था, जितना मजा उस दिन आया था वैसा ही मजा किसी और दिन भी आया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि हर दिन की एक अलग ही खासियत होती है। जो दिन गुजर गया वो कभी पलट कर नहीं आता, और जिस दिन को आपने जिस तरह जी लिया वो जी लिया, क्योंकि वक्त ऐसी चीज है जो कि दोबारा पलट कर कभी वापस नहीं आती। तो इसलिए एंजॉय योर मोमेंट, हंसते मुस्कुराते जिंदगी को गुजारें, गुस्सा शुस्सा ना करें, लोगों से नाराजगी खत्म करें और पहल करने में कभी देरी ना करें। ये मेरा मानना है, बहुत सारे लोग शायद इस चीज पर बिलीव नहीं करते कि जी हम पहल क्यों करें या गलती उसकी थी तो वो करें, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी वजह से किसी जगह का माहौल ठीक हो जाता है तो ठीक करें उसे, क्योंकि मसले मसाइल को हल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हम नहीं करते हैं तो खुदा रहा ऐसा ना करें यार, ये तो बड़ी गलत चीज है। खैर जी, इसी के साथ साथ कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं, आज मुझे एक बड़ा ही मजे का दिन पता चला कि आज इंटरनेशनल पिकनिक डे मनाया जाता है, यानी कि पिकनिक के दिन को आलमी सतह पर मनाया जाता है। तो आप हमें जरूर बताएं कि आपकी जिंदगी की सबसे यादगार तरीन पिकनिक कौन सी रही, समंदर पर जब गए थे तब की पिकनिक, या फिर फार्म हाउस की पिकनिक, या फिर अनकरीबी जो प्लान बनने वाला है वो आपको लग रहा है कि वो सबसे यादगार तरीन दिन है। पिकनिक की बात जब भी की जाए ना तो मुझे लगता है कि एक बहुत सारी यादों का बक्सा खुल जाता है जिसमें आपको बड़ा मजा आ रहा होता है, रात भर एक्साइटमेंट में नींद नहीं आ रही होती, कौन से कपड़े पहनने हैं, अच्छा एक अलग से बैग को पैक करना है जिसमें जो है वो जरूरत की सारी चीजों को रखना है, उसमें मंचिंग्स होंगी, और इसमें बड़ा एक यू नो एक अलग तरह की चीज होगी कि जब आप पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे तो वहां जाने से पहले आप रेडी रहें। तो भाई आज हम बात करेंगे पिकनिक के हवाले से, क्योंकि आज इंटरनेशनल पिकनिक डे मनाया जा रहा है, तो आपकी सबसे यादगार तरीन पिकनिक कौन सी रही हमें जरूर बताएं। और इसे बताने के लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर आपने सेंड कर देना है 3636 पे। तो जल्दी जल्दी हमें मैसेज करें और बताएं कि भाई आपकी जिंदगी की सबसे यादगार तरीन पिकनिक कौन सी थी। जब तक आप हमें बता रहे हैं हम आपको सुनाते हैं ये मजेदार सा ट्रैक, इस ट्रैक को सुनें और फिर हमें बताएं कि आपकी यादगार तरीन पिकनिक कौन सी थी।

जी तो ट्रैक के साथ वापस आ गए हैं और भाई बात हमने की आपकी कोई यादगार तरीन पिकनिक के हवाले से, क्योंकि आज जो है वो इंटरनेशनल पिकनिक डे मनाया जा रहा है। तो मैंने कहा चलो जी अपने लिसनर से भी जानते हैं उनकी यादगार तरीन पिकनिक जो उन्होंने मनाई है और वो आज तक नहीं भूले हैं, या फिर कोई अनकरीबी पिकनिक का प्लान बन रहा है। भाई वो भी बड़ा एक्साइटिंग होता है कि उनके पिकनिक्स आर द बेस्ट। पिकनिक से जाने के से पहले जो एक एक्साइटमेंट होती है ना, मुझे लगता है सबसे बेस्ट ना वो होती है, क्योंकि आज हम पिकनिक पे जाने वाले हैं, कल जाने वाले हैं, और अल्लाह जो एक एक्साइटमेंट होती है ना कि जब ये प्लान डिसाइड हो रहा होता है कि जी पिकनिक पे जाया जाएगा, वो वाला जो टाइम होता है ना, बस दिल चाह रहा होता है कि सारी चीजें एक तरफ हो जाए और जल्दी से ना प्लान डन हो जाए। अच्छा ये खुशी बच्चों की तो होती होती है, लेकिन मुझे लगता है बड़ों की भी बड़ी खुशी होती है। मुझे भी बड़ी खुशी होती है जब हम कहीं पिकनिक पे जा रहे होते हैं तो पूरी रात एक्साइटमेंट में, मुझे भी अभी भी नींद नहीं आ रही होती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिकनिक की जहां तक बात है, फार्म हाउस पे भी बहुत मजा आता है, और सबसे ज्यादा मजा ये होता है कि जो अपनों की गैदरिंग होती है उसकी वजह से एक्चुअली में आपको बहुत मजा आता है। लेकिन समंदर की पिकनिक का ना एक अलग ही मजा होता है। तो भाई हर तरफ की पिकनिकों का एक अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मुझे समंदर के पिकनिक पे बड़ा मजा आता है, क्योंकि वहां समंदर आपको खुद बहुत एंजॉय कराता है। तो भाई आपकी यादगार पिकनिक जो कि आपको याद है हमें जरूर बताएं, क्योंकि आज पिकनिक के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि आज इंटरनेशनल पिकनिक डे मनाया जा रहा है, और इसी हवाले से हम आप लोगों से भी मालूमात ले रहे हैं कि जी आप हमें जरूर बताएं कि आपकी पिकनिक कौन सी ऐसी यादगार रही जो आपको आज भी याद है। यह पिकनिक का प्लान कई सालों से नहीं बनाया, और कई सालों से नहीं बनाया तो ये सिचुएशन कुछ हमारे साथ दी, हमने भी काफी तकरीबन 3 साल से कोई प्लान नहीं बनाया है, एंड दैट इज सो बैड। जरूर बनाना चाहिए क्योंकि इससे आपका माइंड फ्रेश होता है। ये कह लें कि आज इंटरनेशनल पिकनिक डे के साथ साथ ना आज आपको आरजे फातिमा खान ने जो है वो मोटिवेट भी कर रही है कि जो प्लान आपने कई टाइम से नहीं बनाया है उसे आज मना लें, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, बिकॉज वीकेंड भी है, और सबसे अच्छी बात यह कि मौसम भी इस वक्त कराची का अच्छा है। इस वक्त कराची का ऐसा मौसम है कि पिकनिक के बारे में सोचा जा सकता है। तो जरूर भाई आप जरूर सोचें और पिकनिक को प्लान करें। अच्छा आज इंटरनेशनल पिकनिक डे तो मनाया जा ही रहा है, लेकिन आज इंटरनेशनल पैनिक डे भी मनाया जा रहा है। वाह भाई क्वाइट सिमिलर, पिकनिक डे एंड पैनिक डे। बहुत सारे लोगों को पैनिक करने का बहुत आदत होती है कि छोटी छोटी चीजों पे वो बड़ा घबरा जाते हैं या पैनिक बड़ा कर रहे होते हैं, और पैनिक करने से ना मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ना बड़ी बिगड़ जाती हैं, बिकॉज टेंशन और पैनिक और ये और वो। तो यार पैनिक भी नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों की आदत होती है। तो भाई हम तो बात पिकनिक पे कर रहे हैं, तो आप अपनी यादगार पिकनिक हमें जरूर बताएं, क्योंकि मौसम बड़ा आइडियल है भाई, ये हफ्ता अच्छा रहेगा अगर आपको पिकनिक करनी है। सो प्लीज आप लोग अपनी पिकनिक को प्लान कर लें, ये मोटिवेशन है आपको देने के लिए। आरजे फातिमा खान आपके साथ मौजूद हैं।

0: मोटिवेशन है आपको देने के लिए आरजे फातिमा खान आपके साथ मौजूद हैं। सो प्लीज आप लोग अपनी पिकनिक को प्लान करें। अंटिल एंड अनलेस हम चलते हैं गदर ब्रेक के जाने और आते हैं वापस ब्रेक के बाद।
1: कूल किंग चाय होटल पे बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल।

0: 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इनड्राइव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNC को तस्लीम करना है।
2: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबता करें।
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247365

0: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
1: Join Fatima Khan.
0: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
1: Midday break a blast.
2: ओके जी, तो मैसेज भी आ चुका है हमारे पास, उसे हम करते हैं शामिल। हमें मैसेज करते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाउ आर यू। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कहते हैं आई एम गुड। मुहर्रम का महीना भी अब स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल ऐसे ही है। कहते हैं यादगार पिकनिक आज भी याद है जब मैं दोस्तों के साथ हैक्स बन गया था। अच्छा, हॉग्सबे गया था, ओके, देर वॉज अ टाइपिंग मिस्टेक, ऑल राइट। आई थिंक हॉग्सबे ही इज द बेस्ट प्लेस जहां पर हम लोग सब पिकनिक बनाने जरूर जाते हैं। कहते हैं जबरदस्त, खूब नहाए थे, बहुत एंजॉय किया था। लंच में भिंडी है आपके टू डेज का लंच, बिल्कुल सही कहा आपने रशीद खान। मेरे टू डेज का लंच हो चुका है, बिल्कुल हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। तो कल मेरे लंच में क्या था, इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो कल मैंने लंच में बॉयल अंडे खाए थे, यस, क्योंकि कल मेरा जो लंच था वो ब्रेकफास्ट के टाइम पर हुआ था, तो इसलिए मैंने लंच और ब्रेकफास्ट मिक्स ही कर लिया था। तो कल मैंने दो बॉयल अंडे खाए थे, आज मेरे लंच में हलीम है, सो यस, आज और कल दोनों का लंच हो चुका है, डन। तो भाई रशीद खान ने तो अपनी यादगार पिकनिक बताई है, अभी बाकी लोगों की पिकनिक भी जानते हैं यादगार कौन सी रही। लेकिन एक चीज जो कि बड़ी अहम है, देखिए पिकनिक स्पॉट्स तो हमारे ये हैं, इसके अलावा हम लोग वहां भी जा रहे होते हैं, एम्यूजमेंट पार्क जा रहे होते हैं, या फिर आपके घर के करीबी कोई पार्क है वहां पर पिकनिक बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मेक श्योर एक चीज का आप लोगों ने जो भरपूर ख्याल रखना है ना, वो ये है कि सफाई सुथराई का ख्याल रखें। देखिए हम हर चीज पे हुकूमत को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी गलती है। हम साफ सुथरी जगहों को गंदा कर देते हैं, कैसे वहां पर कचरा फेंककर, वहां पर हम अपने साथ जो भी खाने पीने की चीजें कैरी करते हैं वो हम ले जाते हैं और वहीं फेंक कर आ जाते हैं। बट दिस इज नॉट द राइट वे, प्लीज इस तरह मत करें। अपनी पसंदीदा प्लेसेस को साफ रखें। ये देखें आपके लिए पिकनिक स्पॉट्स अवेलेबल हैं, इनको बर्बाद ना करें अपने हाथों से। वहां पर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल फेंकी हुई होती हैं, चिप्स के रैपर्स फेंके हुए होते हैं, बचा हुआ खाने की चीजें फेंकी हुई होती हैं। और इस तरह सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि इस तरह समंदर भी गंदा होता है, तो आप अपने समंदर को खुद से गंदा ना करें। सफाई सुथराई का ख्याल रखें, इसमें कोई मजायका है, कोई हिमाकत नहीं है कि अगर आपने जो कचरा है वो डस्टबिन में फेंक दिया। मैं ये देख रही होती हूँ लोग क्या हरकत कर रहे होते हैं कि अगर डस्टबिन इतना दूर है तो वो वहां से जो है वो उठा उठा के चीजों को फेंक रहे होते हैं कि वो डस्टबिन के अंदर चली जाए, और वो चीजें नहीं जाती हैं। तो मजे की बात यह है कि डस्टबिन तो खाली पड़ा है लेकिन डस्टबिन के इर्द गिर्द जो है वो कचरा पड़ा होता है, तो ये हम लोग काम कर रहे हैं। तो प्लीज कचरा डस्टबिन में डालें, डस्टबिन अगर मौजूद है तो वो इसीलिए मौजूद है कि उसके अंदर कचरा डाला जाए। तो खुदा रहा ये समंदर को गंदा ना करें, फार्म हाउस को गंदा ना करें, पार्क्स को गंदा ना करें, प्लीज कचरा जो है वो डस्टबिन में फेंकें, वहां सरेआम ना फेंकें। ये मेरी गुजारिश है आप सभी लोगों से, क्योंकि जून जुलाई अगस्त जो है वो पीक टाइम होता है पिकनिक्स का, सब लोग जरूर जा रहे होते हैं समंदर या फार्म हाउस या कोई भी ऐसे स्पॉट पे, लेकिन इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो प्लीज गंदगी से करें गुरेज, क्योंकि ये आपकी ना सेहत के लिए अच्छा है, ना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, और ना वहां आने वाले लोगों के लिए अच्छा है। तो सफाई नफ्स ईमान है, इसका आपने रखना है भरपूर ख्याल। तो ये पैगाम है आपको आरजे फातिमा खान की जानिब से, और ये पैगाम भी हम आपको वक्फे वक्फे से देते रहते हैं, इसीलिए देते रहते हैं ताकि भाई इम्प्रूवमेंट आए और ये गलती ना हो। चले जी, तो फिलहाल हम चलते हैं एक अदर ट्रैक की जानिब और आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।

0: This is the Lunchtime Special, only on FM 100.
1: Don't miss out.
2: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the Lunchtime Special with the one and only Fatima Khan.
1: Join Fatima Khan.
2: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
1: Midday break a blast.
3: Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum, everyone. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. मैं आ चुकी हूँ वापस एक बार फिर से, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हमारा और आपका साथ होता है 12 से 2 के दरमियान, मंडे टिल सैटरडे, और ये साथ हमारा और आपका कायम और दायम है। बिल्कुल जी, प्रोग्राम के सेकंड हाफ में दाखिल हो चुके हैं, और प्रोग्राम के सेकंड हाफ में दाखिल होते ही हमारी जो रिवायत होती है वो ये होती है कि जी एक तो ट्रैक हम आपको डेडिकेट करते हैं, उसके बाद लंच पर बात होती है, फिर हमारी जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एक अदर ट्रैक आप सभी सुनने वालों के नाम। तो चलें जी, सबसे पहले अपनी रिवायत को करते हैं कायम, फिर आपको बताते हैं तरीका कार कि कैसे आप भी बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। तो सबसे पहले रिवायत, आज नया सा ट्रैक हमने सोचा कि आपको डेडिकेट करेंगे। ट्रैक तो नया नहीं है, ट्रैक पुराना है, लेकिन आज मैंने सोचा कि इस ट्रैक को आपको डेडिकेट करते हैं, तो एंजॉय करें, एंड देन वी बी राइट बैक।

0: honking.
1: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
2: हम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
0: हल्का सट्टा छुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
4: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।

Hello, hello everyone, and assalamu alaikum to all of you. You guys are tuned into F100 Pakistan, and the show is called Genie in our radio. My name is Jasmine. So guys, today is Thursday, and aap sun rahe hain our show, jiska naam hai Genie in our radio. So aap logo batate chale ki ye request show hai. You can request for your favorite tracks. So ye kaar bahut hi aasan hai. Just type KHR then leave space. आपका मैसेज, आपका नाम, आपकी रिक्वेस्ट और 3636 पर भेजना है. साथ में आप लोग facebook.com/rj.jasminebaby अपना हमें इनबॉक्स कर सकते हैं. यू कैन मैसेज अस और वहां पर भी आप अपनी रिक्वेस्ट बता सकते हैं. सो मीन वाइल वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स द फर्स्ट ट्रैक ऑफ द शो. मिलते हैं आपसे इस गाने के बाद. हमारे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाएगा.

Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio. With your very own RJ, Jasmine. Alrighty, so now welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan and aap log hame messages kar rahe hain 36364. You can also text in on our page, which is facebook.com/rj.jasmine. ठीक है, वहां पे भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने फेवरेट सॉन्ग्स के लिए. सो जनाब, नूर का मैसेज आया है. वालेकुम अस्सलाम नूर, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए. हाँ यार, कल शो नहीं किया था. I'm glad you were listening and you were missing. Thank you so much. So she has requested for the song called Ajare by Shiraz Upal. Okay, thank you so much for your message. We'll definitely play your song. 2:10 ho gaye hain aur aap log ko batate chalein ki aap log bilkul message kar sakte hain hame 3636 par. So meanwhile hamare paas message aaya hai Nida ka. Walekum assalam Nida, bilkul theek thaak, aap bataiye aap kaise hain. आयमा बेग का कहा है उन्होंने बेफिक्रियां सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा. ठीक हो गया है, जरूर प्ले कर देंगे. शाहिद ने हमें मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम शाहिद, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताइए. हाँ यार, कल नहीं आई थी, कल तबीयत थोड़ी सी ऑफ थी, इस वजह से मैंने कल ऑफ किया था, मैं नहीं आई थी. Okay, so meanwhile, we are moving on towards another track. This is going to be the song called Be Fikriya by Aima Bek. Milte hain is gaane ke baad.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर
3: एंड आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं.
0: एंड
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
0: एंड
5: MCB बैंक फॉर लाइफ.
6: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा.
7: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं. लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया. अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
8: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
9: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी NGO वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
10: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें. डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है. दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100.
11: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
12: FM 247365.
13: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio with your very own RJ Jasmine.

Hello, Janelle. Welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan and you are listening to FM 100 Pakistan and you are listening to FM 100 Pakistan. Shahid has messaged us. Ameen, Sumameen, yaar. Thank you so much for your dua. Bahut shukriya. Facebook.com/Orchid or Jasmine pe bhi aap log message kar rahe hain for your favorite tracks aur wahan pe message karke aap log apni request fulfill karwa sakte hain. Aur abhi thodi si der mein jo hai main ek bada mazey ka topic announce karungi and aap logon ne phir participate karna hai show pe. Aur hamare paas message aaya Bilal ka, walikum assalam. Unhone request kiya hai Afreen Afreen play kar dijiyega. Unhone page pe hame message kiya, zarur play kar denge aapke liye. Thank you so much for your message. Afreen Afreen jo hai wo play ho jayega, balki abhi play kar denge, koi masla फॉरन जब प्ले होता है ना सॉन्ग लिसनर्स का, बड़े खुश होते हैं. फॉरन गाना लगा दिया हमारा एंड मुझे भी अच्छा लगता है कि फॉरन रिक्वेस्ट प्ले होगी ना, चलो ये अच्छा काम हो गया. ओके, नायला हैज टेक्स्टेड इन, वालेकुम अस्सलाम. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उन्होंने कहा है बारी प्ले कर दीजिएगा बिलाल सईद का. अरे यार, बारी वैसे सॉन्ग चलाए हुए काफी दिन भी हो गए मुझे, मैं जरूर प्ले कर दूंगी आपके लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. So meanwhile, we are moving on towards the song of the request of Bilal. This is going to be the track called Afreen Afreen. Milte hain iske baad, hamare saath rahega.

0: in radio. Radio.
1: Alrighty, so now welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan. The show is called Genie in a Radio. Sami, thank you so much for your message. Aapne page pe message kiya. Yaar, mujhe option mein koi aur song bhi bata do, theek hai? Agar ye nahi play kar sake to dusra aapke liye play kar denge. Alright, aap page pe message karein. Acha, aaj jo hum baat karne wale hain, topic bada interesting hai. It is about, aapne batana hai ki agar aapke paas 500 rupees ho, yani 500 rupees ka bhi challenge karna ho, to shopping ke liye अभी ऐसी क्या जरूरी चीज है जो आपने खरीदनी है और सिर्फ 500 रुपए हैं, इसमें आप क्या क्या खरीदेंगे और क्या एक चीज है जो सबसे पहले खरीदेंगे? लेट अस नो ऑन 3636. कम पैसों में देखते हैं क्या क्या खरीदा जा सकता है. सो आप आज मैसेज करके हमें बताएंगे 3636 पर, या पेज पे भी आप मैसेज कर सकते हैं facebook.com/rj.jasmine पे, और बता सकते हैं कि 500 रुपीज में सबसे पहले क्या खरीदेंगे. और पैसा ज्यादा नहीं है और अभी कोई ऐसी चीज है जो फौरन खरीदनी है, लेट अस नो. 2:30 हो गए हैं, एक ब्रेक का टाइम आ रहा है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. हमारे साथ रहिएगा, मैसेजेस करते रहिए 3636 पर, facebook.com/rj.jasmine पे भी करते रहिए.
2: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है. अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका. बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना.
3: शराय तो जवाबित लागू है.
4: कूल किंग. बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
5: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी. घर बैठे

0: बैठे जैस कैश से तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हायर T3AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट, हायर।
3: एंड आज ही हायर मिनी LED TV लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए।
4: एंड हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग, नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
5: एंड MCB बैंक फॉर लाइफ।
6: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM247365.
8: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio. With your very own RJ, Jasmine. Genie in a radio.

Alrighty, Janelle, welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan and आप लोग हमें messages कर रहे हैं 3636 पर. जनाब आज का topic जो है ना वो बड़ा interesting है और topic हमारा ये है कि 500 rupees challenge के हवाले से बात हो रही है. आपके पास सिर्फ 500 रुपए है और आपने कोई बहुत जरूरी चीज खरीदनी है, आपके दिमाग में है कि बस अभी हमने जाके कुछ ना कुछ खरीदना है, तो वो सबसे पहले ये चीज होगी. सही, लेकिन है भी 500 रुपए. ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या खरीदेंगे अभी, ऐसी क्या जरूरी चीज है जो आपने फौरन से खरीदनी है और है भी 500 रुपए. सो मैसेज करके बता सकते हैं और अगर चाहें तो facebook.com/arjun.jasmine पे भी बता सकते हैं. ओके, हमारे पास मैसेज आया है लाइबा का. मैं कोन, मेहंदी और चूड़ियां खरीदूंगी. अरे फाया, दैट्स नाइस. ओके, आपने जो सॉन्ग बताया यार, मुझे थोड़ा एक तो सिंगर का नाम बता दो और साथ में एक और सॉन्ग भी बता देना जब सिंगर का नाम बताओ. सही है, ताकि अगर हम ये ना प्ले कर सकें तो दूसरा प्ले कर दें आपके लिए. ओके, शकील ने मैसेज किया है कराची से, मैं अपने मोबाइल में बैलेंस लोड कराऊंगा. हाँ यार, ये भी सही है. ओके, वकार ने मैसेज किया है क्या हाल है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं. सावरे गाना, यार मुझे बता दो गाना, अगर पाकिस्तानी मूवी का है, किसी पाकिस्तानी सिंगर का है तो मुझे मैसेज करके बता दो, हम प्ले कर देंगे आपके लिए. ठीक है, सो जनाब टॉपिक आज का बड़ा इंटरेस्टिंग है. आपने बताना है कि 500 रुपीज चैलेंज के हवाले से बात हो रही है, जेब में सिर्फ है 500 रुपए और कोई ऐसी जरूरी चीज भी खरीदनी है, तो क्या खरीदेंगे. मैं पता क्या करूंगी, 500 रुपए पड़े तो मैं कुछ खा ही लूंगी अच्छा सा, बिकॉज आई एम अ फूडी पर्सन, तो जो मुझे पसंद होगा मैं वो खरीद के खा लूंगी, यही करूंगी. दिस इज द लीस्ट थिंग आई कैन डू राइट नाउ. है 500 रुपए, चलो यार कुछ खा ही लेते हैं, कुछ मजे का खा लेते हैं जिसकी तलब हो रही है. तो आप भी बता सकते हैं जेब में है सिर्फ 500 रुपए, क्या खरीदेंगे. मैसेज करके बताइए facebook.com/arjun.jasmine पे भी बता सकते हैं और 3636 पर भी मैसेज करके बता सकते हैं. Meanwhile, we are moving on towards another track and this is going to be the song called अच्छा, महवेश ने पेज पर मैसेज किया है, दिल जाने या रिक्वेस्ट किया है हदीका के आने का, जरूर प्ले कर देंगे आपके लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. Meanwhile, हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कभी मैं कभी तुम के ओएसटी के लिए, जो पेज पे ही हमारे पास आई है. सो मिलते हैं इस गाने के बाद, हमारे साथ रहेगा.

0: your fingers do the talking. SMS now on 3636.
1: जैश कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैश कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैश कैश है ना।
2: शराय तो जवाबित लागू है।
3: This program is brought to you by
4: Hire T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Hire.
5: And aaj hi Hire Mini LED TV line. Aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
6: And Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator. Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
5: And
7: MCB Bank for Life.
8: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: Like us on facebook.com/fm247365
11: fm247365 Genie in radio.

ladies and gentlemen, welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan and the show is called Genina Radio. So aap logo batate chale, aaj hum baat kar rahe hain 500 challenge ke hawale se, 500 rupees challenge ke hawale se. Jeb mein hai sirf 500 rupees aur kuch khareedna hai bahut zaruri. To kya khareedenge abhi foran jo khareedna hoga. Aap bata sakte hain message kariye. Maine kaha main to 500 rupees jo hai mere paas hain to I'll go and eat something good jo mujhe khana hoga. और शायद मैसेज क्या है 500 रुपए रख देने चाहिए जब ज्यादा पैसे आ जाए फिर कुछ लेना चाहिए या अगर 500 रुपए किसी गरीब को छुपा के दे दे. हाँ यार ये भी अच्छी चीज है. वेरी नाइस. इनामुल हक ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. वालेकुम अस्सलाम. मैं 500 रुपए इन्वेस्ट करूंगा. कहाँ इन्वेस्ट करेंगे जरा बताएं, मुझे भी थोड़ा सा बताएं ताकि मैं भी कोशिश करूं कि 500 रुपए अगर मेरे पास भी बचे हुए तो मैं बचा लूं और इन्वेस्ट करूं कहीं. ओके इसे बकार ने मैसेज किया है, अगर मेरे पास 500 है तो मैं वीआईपी बिरयानी खा लूंगा और एक कप चाय, अगर बच गए फिर भी एक कप चाय. जबरदस्त है यार, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. ये भी मेरी तरफ फूडी निकला, मैं भी यार कुछ खा ही लूंगी और चाय तो जाहिर है मस्ट है. मैं भी यही करूंगी कुछ अच्छा सा खा के एंड देन विल हैव अ गुड कप ऑफ टी, क्योंकि चाय जो है वो जरूरी है. अगर इट्स 49 मिनट्स पास टू ऑन द डायल राइट नाउ एंड हमारे पास मैसेज आया है नीलम का. वालेकुम अस्सलाम, ये पेज पर हमें मैसेज किया है दिल कमला, इन्होंने सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है, जरूर प्ले कर देंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. ओके जुबैर ने मैसेज किया है, वालेकुम अस्सलाम जुबैर, and Zubair has requested for the track called kya request kiya unhone, blockbuster. okay blockbuster play ho jayega. bahut shukriya aapke message ka. so meanwhile we are moving on towards another track and this is going to be the song called dil gamla. so janab topic jo hai wo bada interesting hai. aaj pooch aap se ye rahe hain ki aapke paas pade hain sirf 500 rupaye to kya karenge abhi foran, उसको सेव करेंगे, उसको बचाएंगे या कुछ जाके खरीदेंगे या कुछ खाएंगे. आप हमें बता सकते हैं मैसेज करके 3636 पर, चाहे तो पेज पे भी मैसेज करके बता सकते हैं व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट. मिलते हैं इस गाने के बाद, हमारे साथ रहिएगा. द ट्रैक इज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग दिल कमला. नहीं पहले दिल जानिया प्ले कर देते हैं, क्या बोलते हैं, या दिल कमला प्ले कर देते हैं क्योंकि वो प्ले कर दिया है, इसके बाद दिल जानिया प्ले करेंगे.

0: Alrighty, Janelle, welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan. आप लोग हमें messages कर रहे हैं 3636 पर. It's 58 minutes past 2 on the dial right now. 4 बजे तक हम जो हैं आप लोगों के साथ मौजूद हैं. मैसेज कर सकते हैं 3636 पर. एंड हमारे पास काफी सारे मैसेजेस आ भी रहे हैं. रिमशा ने हमें मैसेज किया है. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज रिमशा. मैं आपका सॉन्ग देख लेती हूँ. अगर कुछ और ऑप्शन में बताना चाहती हो तो मुझे वो भी बता दो. सो आज हमारा टॉपिक ये है कि आपकी जेब में है 500 रुपए, तो क्या करेंगे उन 500 रुपए का. और अगर कुछ जरूरी खरीदना है तो वो भी बता सकते हैं मैसेज करके. एंड अगर आप उन 500 रुपए से कुछ खा लेंगे तो आप हमें वो भी मैसेज करके बता सकते हैं. facebook.com/orjan और जैस्मिन पे भी बता सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट इन ऑन 3636. सो मीनवाइल एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ रहा है. ब्रेक की तरफ जाते हैं. हमारे साथ रहिएगा. मैसेजेस करते रहिए facebook.com/orjan पे एंड 3636 पर भी मैसेज करते रहिए. मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद. कीप ऑन टेक्स्टिंग.
1: Let your fingers do the talking. SMS now on 3636.
2: Keep it here. We are putting the hits into high gear.
1: High gear.
2: FM 100.
1: The hits keep on coming.
2: Keep it here. We are putting the hits into high gear.
1: High gear.
2: FM 100.
1: The hits keep on coming.
3: FM 100's time check. It's 3 p.m. This program was brought to you by
4: Higher T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Higher.
5: And aaj hi Higher Mini LED TV laaye aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
6: And Higher ka naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
5: And
7: MCB Bank for life.
8: Like us on facebook.com/FM247365.
9: FM247365.
10: Let's celebrate
11: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
12: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
13: Radio.

Alright, ladies and gentlemen, welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan and aap log hame messages kar rahe hain 3636 par. Tareeqekar bahut hi aasan hai. Just type hey shayad and leave space. Aapka message, aapka naam, aapki request 3636 par bhejna hai. Aur isi ke saath saath facebook.com/archer.jasmine pe bhi aap apna feedback hame bilkul de sakte hain. Aur tareeqekar bahut hi aasan hai. फीडबैक के साथ साथ जो है आप कोई भी ट्रैक अगर अभी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. सो जनाब आज हम बात कर रहे हैं अबाउट 500 रुपीज चैलेंज. सिर्फ जेब में 500 रुपए हैं अभी फॉरन से क्या खरीदना है, किस चीज पे खर्च करेंगे, लेट अस नो ऑन 3636 मैसेज करके आप बता सकते हैं. ओके हमारे पास बुशरा ने मैसेज किया है. वालेकुम अस्सलाम बुशरा, बिल्कुल ठीक ठाक हूं मैं, आप बताइए आप कैसी हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एंड रिक्वेस्ट किया है ट्रैक मेरी जिंदगी है तू का ओएसटी, चलें जरूर प्ले कर देंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, अप्रिशिएट इट. ओके नबील ने मैसेज किया है. वालेकुम अस्सलाम नबील, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसे हैं. नबील ने रिक्वेस्ट किया है आतिफ असलम का सॉन्ग, चलें ठीक है जरूर प्ले कर देंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. मीनवाइल वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द ओएसटी ऑफ मेरी जिंदगी है तू. मिलते हैं इस गाने के बाद, हमारे साथ रहिएगा.

0: Radio.
1: The difference is clear. FM 100.
2: This is your music.

0: KHI space your text message. Send it to 3636.
1: Genie in radio.

0: Radio, radio. All right, ladies and now welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan. Hamare paas shahid ka message aaya. Please play the track Mast Nazron Se Allah Bachaye by Nusrat Fateh Ali Khan. Theek hai, zarur play kar denge. Thank you so much for your message. Okay, hamare paas message aaya hai. Raima, Waalaikum Assalam. Raima, bilkul theek thaak. Bin Roy ne request kiya hai Shiraz Upal ka. Theek ho gaya, zarur play kar denge. Thank you so much for your message. facebook.com/archer.jasmine पे आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं एंड facebook.com/fm247363636 पे आप मैसेज करके भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड facebook.com/archer.jasmine पे भी अभी आप इनबॉक्स करेंगे और रिक्वेस्ट कर सकते हैं. एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ रहा है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. आप लोगों ने मैसेज करके बताना है कि 500 रुपीज हैं आपके पास सिर्फ, तो क्या करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे, क्या क्या चीज खरीदेंगे. Let us know on 3636. मिलते हैं इस गाने के बाद, सॉरी मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद.
1: KHI space your text message, send it to 3636.
2: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
4: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर ना आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
5: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM247365.
0: Genie in radio.

नमस्कार जी जनाब, वेलकम बैक। सो यूर लिसनिंग टू F100 पाकिस्तान। हमारे पास निगहत का मैसेज आया है। वालेकुम अस्सलाम निगहत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। ओके, इन्होंने रिक्वेस्ट किया है, जल परी ठीक हो गया है, जरूर प्ले कर देंगे आतिफ असलम का। बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। संतोष कुमार, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। ओके, सो 3:25 हो गए हैं। द टॉपिक फॉर टुडे शो इज, आपने बताना है 500 रुपीज आपके पास बचे हैं, सो व्हाट इज दैट वन थिंग जो सबसे पहले आप करेंगे। आप मैसेज करके बता सकते हैं 3636 पर, या पेज पर भी बता सकते हैं। मीनवाइल एक और सॉन्ग की तरफ जा रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी द सॉन्ग कॉल्ड बिन रोए। मिलते हैं इस गाने के बाद, हमारे साथ रहिएगा।

0: KHI space your text message. Send it to 3636.
1: Cool King.
2: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
3: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
4: In radio.

हमें मैसेज किया है, रिक्वेस्टेड फॉर द सॉन्ग कॉल्ड इजाजत बाय बिलाल सईद. ओके, जरूर प्ले कर देंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. जमीर हैज टेक्स्टेड इन और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है इश्क बाय फहीम अब्दुल्ला. ठीक हो गया है, जरूर प्ले कर देते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम निगत की रिक्वेस्ट की तरफ चलते हैं. और सबसे पहले टॉपिक भी बता दें, काफी सारे मैसेजेस आए हैं आज इस टॉपिक के हवाले से. टॉपिक इंटरेस्टिंग है इस वजह से क्योंकि मैं खुद भी ये सोच रही थी कि यार कभी कभार ऐसा होता है यू नो कि पैसे बिल्कुल कम होते हैं और हम सोच रहे होते हैं यार ये कम पैसों में जरूरी चीज खरीदनी है तो क्या खरीदें, यू नो इसको सेव करें, इसको बचाएं या इसको खर्च कर दें. तो यही हम पूछ रहे हैं कि 5 रुपए पड़े हैं आप लोग क्या करेंगे. लेट अस नो ऑन 3636. मीन वाइल वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स दिस ट्रैक एंड द सॉन्ग इज द रिक्वेस्ट ऑफ निगत ने हमें मैसेज किया था, उन्होंने जल्द पर रिक्वेस्ट किया था. मिलते हैं इस गाने के बाद.

0: KHI space your text message. Send it to 3636.
1: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
4: फ्रॉड और जाली पैगामात से होशियार रहें। फ्रॉड करने वाले जाली पैगामात और कॉल्स के जरिए आपकी जाती या माली मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे पैगामात पर बिल्कुल यकीन न करें जिनमें इनाम, अकाउंट बंद होने या आपको आपकी जाती मालूमात की वेरिफिकेशन का कहा जाए। याद रखें, ये फ्रॉड भी हो सकता है। आइए जानते हैं फ्रॉड के आम तरीके। पीटीए बैंक या सरकारी अदारे का नुमाइंदा बनकर आपसे आपकी जाती मालूमात तलब करना, जाली कोरियर या हुकूमती स्कीमों का नाम इस्तेमाल करते हुए आपको झांसा देना, आपको मशकूक लिंक्स या QR कोड्स भेजना। याद रखें, पीटीए बैंक या कोई भी सरकारी अदारा कभी भी फोन, ईमेल या पैगाम के जरिए आपसे पासवर्ड, OTP या CNIC नहीं मांगता, लिहाजा किसी भी मशकूक लिंक पर हरगिज क्लिक न करें और अपनी मालूमात हरगिज किसी के साथ शेयर न करें। और अगर कोई फ्रॉड कॉल या पैगाम वसूल हो, इसका जवाब मत दें। अपनी शिकायत का इंद्राज complaint.pta.gov.pk या PTA CMS मोबाइल ऐप पर रिपोर्ट करें या PTA की हेल्पलाइन 0800-55055 पर अपनी शिकायत का इंद्राज करें। व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाला पैगाम बराह रास्त व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें। इसके अलावा साइबर क्राइम के हवाले से आप अपनी शिकायत का इंद्राज 1799 या complaint.nccia.gov.pk पर भी कर सकते हैं। बैंक फ्रॉड के लिए cpd.helpdesk.sbp.org.pk पर विजिट करें। याद रखें, आपकी आगाही ही आपका तहफ्फुज है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी।
5: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
0: facebook.com/fm247365 KHI space your text message. Send it to 3636.
6: Radio.

जी जना वेलकम बैक. सो आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड शो का टाइम जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने पर है. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द टेक्स्ट सेंडर्स आउट देयर, जितने लोगों ने हमें मैसेजेस किए. सो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात करेंगे. आज हमारे शो का टॉपिक जो था दैट वॉज अबाउट के अगर सिर्फ 500 रुपए बचे हुए हैं तो क्या करेंगे, उसका कुछ ऐसी जरूरी चीज खरीदेंगे या उसको सेव करेंगे. तो काफी लोगों ने जो है वो डिफरेंट जवाब दिए, इंटरेस्टिंग जवाब दिए मैसेजेस पे भी और पेज पे भी. सो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात करेंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जिनकी रिक्वेस्ट आज फुलफिल नहीं हो सकी तो उनको हम सॉरी करते हैं, अपोलोजाइज करते हैं. नेक्स्ट शो में डेफिनेटली आपकी रिक्वेस्ट इंक्लूड करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके मैसेजेस का, पार्टिसिपेशन का. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. दिस हैज बीन मी जैस्मिन, आई एम सेइंग गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.

0: Your location for maximum music. This program is brought to you by
1: MCB Bank for Life.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: This program is brought to you by
1: MCB Bank for Life.
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and Aji, Hire Mini LED TV Line, aur Stadium Ka Mahol, Ghar Mein Banaye.
3: And अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
4: एंड लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके
0: एंड
5: एमसीबी बैंक For life
0: and
6: live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
0: And
7: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
8: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे होशियार रहें मोहतात रहें अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें हुंडी हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है याद रखें दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है हुकूमत पाकिस्तान
9: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया
10: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
11: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: अपने कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: MCB1 करंट अकाउंट हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
3: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर AC अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
4: किसने कहा

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Likhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
3: and Aji, Higher Mini LED TV Line, और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए।
4: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
5: एंड लाइफबॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
6: एंड MCB बैंक फॉर लाइफ।
7: एंड लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
8: एंड

This is FM 100. Come on.

0: This program was brought to you by MCB Bank for Life. It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Bill ko hai aaram.
2: Cool King.
3: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
4: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
5: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
6: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी जानदार, बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड, करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
7: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
8: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
9: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
10: अगर आप हैं इंड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
11: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
8: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
12: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
13: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर AC, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
14: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.

0: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
1: शराइत जवाबित लागू है।
2: This program is brought to you by
3: AGS Tubular दिखाए काम, AGS Tubular Battery, दिल को है आराम,
4: and Cool King Hair Oil, जैसे चलता फिरता एसी,
5: and आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए।
0: एंड अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
6: एंड लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
7: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
5: एंड

0: मेरा आराम, AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: कूल किंग चाय होटल पे बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैग सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144 Hz पिक्चर क्वालिटी जानदार, बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
3: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
6: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
7: इंट्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंट्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
9: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर AC, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
10: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
11: Kisne kaha tha paise bacha?
12: Phoenix laga.

0: जैश कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैश कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैश कैश है ना।
1: शराय तो जवाबित लागू है।
2: This program is brought to you by AGS Tubular.

0: साबित लागू हैं।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी दिल को है आराम,
3: एंड कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी,
4: एंड आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
5: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
6: एंड लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
7: एंड लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
8: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
9: एंड तूफान है
10: Higher T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Higher.
11: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
12: FM 247365. Evening drive time with DJ.

0: Whoa.
1: Happy station for a happy nation. This is FM 100.

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. Cool King. Boss ki demands ne kar diya dimag ka system hang.
2: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
3: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से. तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना.
4: नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
5: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
4: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
6: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Hire ka naya Real T3 Inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. Jo apne full BTU se de 100% cooling efficiency. 53 degree centigrade par bhi. Hire T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Hire.
7: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है. अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका. बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना.
8: शराय तो जवाबित लागू है.
0: This program is brought to you by
9: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and
10: Aaj Hi, Hire Mini LED TV Line, Aur Stadium Ka Mahol, Ghar Mein Banaye.
0: And
7: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: And
11: Lifebuoy एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके.
0: And
12: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
0: And

0: PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: And
2: Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
0: And
3: Aji Higher Mini LED TV Line. और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
0: एंड
4: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
0: एंड
5: लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
0: एंड
6: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
0: एंड
7: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
8: कूल किंग।
9: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
10: हम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
11: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन, 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी जानदार, बनाए हर मैच को शानदार, पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड, करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
12: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
13: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
14: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
4: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
14: एक दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
15: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
13: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
16: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
17: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर AC अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
18: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
19: MCB1 current account. Har Pakistani ka ek account. जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
4: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
8: शराय तो जवाबित लागू है।

0: This program is brought to you by Tufaan Hai Har Jeet Ki Pehchaan Hai and
1: Higher T3 AC Expert Extreme T3 Inverter for Extreme Heat Higher.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
5: FM247365
6: Let's celebrate
7: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
9: Evening drive time.

0: 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Cool King.
2: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
3: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: Cool King.
2: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
3: लगाओ Cool King हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। Cool King हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
5: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: तूफान है
0: and
6: higher T3 AC expert, extreme T3 inverter for extreme heat. Higher.
8: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी NGO वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है, वो आपकी जात तक पहुंचता है। आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
2: Tufaan hai ye, har jeet ki pehchaan hai ye.
0: And
3: Hire T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Hire.
4: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
5: 100 FM.
6: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
5: 100 FM.
7: Jazz Cash ke saath pao 1 crore jeetne ka shandar mauka. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैज कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
8: शराय तो जवाबित लागू है।
0: This program is brought to you by
9: Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247 365
10: FM 247 365 FM 100
11: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
10: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
12: 100 100
0: इवनिंग ड्राइव टाइम विद बीजे क्रिस्टी।

0: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: 100 FM Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
2: 100 FM Jazz Cash ke saath pao 1 crore jeetne ka shandar mauka. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
3: शराय तो जवाबित लागू है।
4: This program is brought to you by
5: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
6: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
7: FM247365
8: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجئے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجئے.

0: हेलो भाई, चेक 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सभी सुनने वालों को आयाज अहमद की जानिब से आदाब। क्या हाल है, कैसे मिजाज है और तबीयत कैसी है? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे, ठीक ठाक होंगे। सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो चैनल एफ एम 100 और जनाब रोज ही तकरीबन मुलाकात होती है 9 to 11। और गाने में सुनाता हूँ, मैसेजेस आप लोग बहुत प्यार से कर रहे थे, गुस्से से भी कभी कभी आ जाते हैं लेकिन वो भी मैं पढ़ता हूँ। और मैसेज आप लोग करते हैं के एच आई स्पेस, टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर। अच्छा जनाब, थर्सडे और थर्सडे वाले दिन भी हमने क्यू शीट बनाई हुई है और उसको हम फॉलो करेंगे। और कोशिश मेरी यही है कि आपके फेवरेट ट्रैक्स जो हैं वो इस क्यू शीट में शामिल हो। और आज कुछ नए नए गाने भी आपको सुनने को मिलेंगे। और आवाज जो अगर आपको अभी थोड़ी देर बाद सुनाई देगी वो जरा सुनी सुनाई मिलेगी, क्योंकि आज एक बहुत मजे की गेस्ट हमने यहाँ इन्वाइट किया हुआ इनको। और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं सुकून के साथ शो करूंगा, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छी आरजे हैं। तो इनके बारे में तसल्ली से मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आगाज करेंगे इस खूबसूरत ट्रैक से। लेकिन उससे पहले एक दफा फिर मैं आपको बता दूं, जो लोग सुनते रहते हैं उनको तो पता है कि कैसे एड्रेस, कैसे मैसेज, किस तरीके से पहुंचाने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, KHI स्पेस, टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर। क्या बात है नदीम भाई, टाइमिंग के आप बस कमाल टाइमिंग है आपकी। नदीम भाई हमारे प्यारे से इंजीनियर, और गाना लगाने से पहले उन्होंने मुझे कहा बेटा गाने की तरफ बच जाना, पहले जरा ब्रेक लगा लो। ब्रेक बहुत जरूरी है दोस्तों, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ब्रेक पे पांव रखे, किसी किस्म की जल्दबाजी आपने नहीं करनी। तो दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: This program is brought to you by
2: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries।
3: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
4: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए, कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
7: Active,
8: yummy,
7: adorable, seven.
8: Kya pyaas to suno yaar.
0: भाई जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी कर रहे हैं। अच्छा जनाब, गेस्ट से बिल्कुल आपका मैं تعارف کراتا ہوں، لیکن کامیاب گیسٹ کی یہ علامت ہوتی ہے، یہ ایک بات ہوتی ہے کہ ان کے آنے سے پہلے میسیجز ٹکا کے پہنچے ہوئے، اور آج ایسا ہی سین ہے، تو لگتا ہے آج بہت سارے میسیجز ان کے لیے آئیں گے، تو ان سے بات چیت کریں گے، لیکن آغاز کریں گے اس خوبصورت ٹریک سے، اور وہ ہے کیسے

0: हुआ जनाब, वेलकम बैक सुन रहे हैं 100 और साथ ही साथ जनाब मैसेजेस भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। KHR स्पेस टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर। अच्छा भाई, बड़े दिन से हम जिक्र कर रहे थे एक आरजे का, और वो हमारा शो भी सुनती रहती है, तो और मैं कहता रहता था भाई कि उनको हम अपने शो में बुलाने वाले हैं, और बिल आखिर वो अजीम दिन आ गया और हमने उनको इन्वाइट कर दिया अपने शो में। तो भाई आज हमारे साथ मौजूद है अस्मा हुसैन। अस्मा जी वेलकम कहेंगे FM 100 पर, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच कि आज आपने मुझे बुलाया यहाँ पर।
0: क्या बात है, आवाज ये होती है आरजे की, आवाज मेरी जैसी नहीं बल्कि क्या खूबसूरत। भाई मैं इनके बारे में बता दूं, 101 पर जबरदस्त प्रोग्राम करती हैं, बेहतरीन आरजे हैं, और इनके बारे में इनसे लाइव ही पूछते कितना अरसा हो गया भाई आरजे, और माशाल्लाह जो फैन फॉलोइंग है आपकी उससे तो अंदाजा होता है कि काफी अरसे से है।
1: हाँ जी, 11 साल हो गए मुझे रेडियो पाकिस्तान पर।
0: माशाल्लाह रेडियो पाकिस्तान बोले तो 101
1: पर।
0: अच्छा, पहले तो वो मीडियम वेव का दौर होता था ना?
1: नहीं, मुझसे पहले था, मैं इतनी भी पुरानी नहीं हूँ।
0: अच्छा, नहीं मुझे देख के लगा कि काफी पुरानी है, लेकिन नहीं इतनी नहीं है भाई, है लेकिन इतनी नहीं है, ये बात मानने वाली है। अच्छा, तो भाई ये बताइए कि FM 100 आकर और आपको कैसा फील हो रहा है, और आपका नो डाउट वो भी अच्छा ही होगा 101, लेकिन जहाँ कुछ आपको फर्क महसूस हो रहा है?
1: बहुत ज्यादा फर्क महसूस हो रहा है मुझे यहाँ आके ना, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: पक्की बात, ऐसा ना 101 सुन रहे हो बेटा क्या?
1: नहीं नहीं,
0: दूसरी जगह जाके अपने इदारे को भूल गई हो दूसरों की तारीफ?
1: नहीं नहीं, 101 बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत से ज्यादा अच्छा लगा है।
0: बहुत अच्छी बात है। और अगर 101 के लोग सुन रहे हो तो देखो यार, हम आप मुझे ये पद सुन के बड़ा वो लगा कि आप जो है वो दूसरे चैनल्स के नाम नहीं लेते, हमारे पाकिस्तानी चैनल्स हैं और सारे अपने चैनल्स हैं, और इनका नाम जरूर लिया करें। हमने तो 101 की आरजे को बुला लिया। ये देखिए, ये एक दिल होता है, ये भी देखें आप कि नाम तो दूर की बात, हम तो आरजेस को भी इतनी इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन हम लोग भी बुलाते हैं अपने FM पे 101 पे, लेकिन हम कहते हैं ये प्राइवेट चैनल के आरजे हैं।
0: ऐसा नहीं करें, मैं तो जाके FM 100 का नारा बुलंद कर दूंगा कि भाई मैं तो FM 100 से आया, और ये कोई इसराइल में नहीं है तो पाकिस्तान में। और लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको,
1: हाँ जी,
0: मैं उनके शो में 2 दफा जा चुका हूं आपके 101 पे, वो बड़े टॉप पे था और छत पे, बल्कि कौन सा फ्लोर था, 17 फ्लोर में, वहां जाके ठंड, नीचे गर्मी थी, ऊपर पहुंचे तो ठंड लगी हुई। मैंने कहा भाई पहले बोलते हैं हम कोई जैकेट वैकेट ले आते, इतना ऊपर
1: नहीं। अच्छा, अब जो है ग्राउंड फ्लोर,
0: ग्राउंड पे, हाँ जो हालात चल रहे हैं उसको ग्राउंड पे कर दिया।
1: बिल्कुल,
0: चले भाई ठीक है, लेकिन ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे रोका भी नहीं, जो सच्ची बात है, जो मैं ऑन एयर कहना चाहूंगा कि 101 वालों ने, उन्होंने FM 100 का नाम लेने दिया मुझे, तो
1: सही,
0: अच्छे लोग भी हैं मेरे ख्याल से।
1: हाँ, अच्छे लोग थे।
0: अच्छा चलो, अस्मा देख लो, सुनने वाले सुन भी रहे होंगे, ऐसा ना करो यार भाई के ऐसा। अच्छा जना, तो ये बताइए किस तरह का शो करती हैं आप, वहाँ पे क्या होता है?
1: जी मेरा शो इवनिंग ड्राइव टाइम होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ 2 घंटे का शो होता है तो उसमें लोग हंस कर जाएं, मुस्कुरा कर जाएं, तो मेरा संजीदा टॉपिक नहीं होते, मेरे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, या फिर कोई ऐसा टॉपिक रख लेती हूँ जिसमें कोई मुश्किल कोई बात होती है, आसान सी जिंदगी गुजारने के लिए कोई अगर आपको आसान से कोई बात लगती है तो आप बता सकते हैं मुझे कि इसमें कौन सी ऐसी आसान बात है जिससे आप अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं।
0: वो आरजे भी होते हैं ना, बस बोले जा रहे होते हैं, लेक्चर दिए चले जा रहे होते हैं, क्योंकि दुनिया का बस मैं ही अच्छा आदमी, बाकी सारे जो है ना वो शैतान है।
1: नहीं नहीं, मैं कहती हूँ कि मैं सही नहीं हूँ, बाकी सारे सुनने वाले।
0: तो बड़ापन है आपका, ये तो बहुत बड़ापन है आपका, वरना तो मैं सुनता हूँ FM और भी चैनल तो इतना लेक्चर देते हैं, पका देते हैं बाजों का, तो मैं वो कहता हूँ यार पकाओ नहीं यार, इंसान रेडियो क्यों लगाता है?
1: बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरा टाइम ऐसा होता है कि लोग ज्यादातर ड्राइविंग करते हुए सुनते हैं, तो ड्राइविंग के हवाले से भी मैं इतना बोलती हूँ, लोग कहते हैं ऐसा लगता है जैसे आप ट्रैफिक कांस्टेबल हैं।
0: क्या लेकिन आप अच्छा ये अच्छा करती है आपके उस टाइम पे इस तरह की बातें बताती।
1: बिल्कुल,
0: अच्छा शुक्र है मेरी तरह नहीं बताती, मैं तो यार जो मुंह में आ रहा बोले जा रहा हूँ। और बेरा जनाब इजाजत हो तो मैसेज शामिल कर लूँ मैं?
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: अच्छा जी, बिलावल गिजरी से मैसेज करें, आज भाई आपको सलाम, सुंबल जी को भी और कादिर भाई को और तमाम लिस्टर को अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल फिट फाट होंगे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बिलावल भाई आप बताइए तबीयत कैसी है आपकी, और आज क्योंकि अस्मा हुसैन आई हुई है FM 101 से और बहुत जबरदस्त आरजे हैं, और इनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं, इनके एक्सपीरियंस भी मालूम कर रहे हैं कि क्या है, तो आपने भी कुछ पूछना हो अस्मा जी से तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। साथ साथ अस्मा जी गाने भी हैं, गाने किस तरह के, अंग्रेजी उर्दू किस तरह के चलाते हैं वहाँ पे?
1: उर्दू
0: उर्दू
1: पंजाबी उर्दू हिंदी।
0: हेलो चेक करो फिर पंजाबी गाना।

0: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
2: 100 FM
3: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
4: शराय तो जवाबित लागू है।
5: This program is brought to you by
6: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
5: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365
7: Active, yummy, adorable, seven. Say I've got a crush on you. Yeah,

0: Right, so now welcome back to FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस भी कर रहे हैं 3636 पर. और जनाब आज और कुछ होना हो, मैंने इनको चीनी से जो है ना मना कर दिया है. चाय मंगाई थी मैंने और चीनी मैंने बिल्कुल नहीं डाली, और वो कह रही चीनी के बगैर मैं कैसे चाय पीऊं. मैं आपको बताऊं, एक उम्र होती है उसके बाद चीनी पे आप बिल्कुल डॉट लगा दें तो इससे सेहत काफी अच्छी होगी. वैसे मैंने आज से आपकी आदत ये कुछ सीख रही, कोशिश करेंगे, वादा करके जानी
1: कोशिश करूंगी,
0: वादा नहीं है तो ठीक हो गई. ये भी अच्छी सच बोला ना, कहा नहीं चीनी तो मिल जाएगी, कुछ हो जाए जिंदगी इधर जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन चीनी के बगैर मैंने नहीं रहना. ऐसा ही है. अच्छा जी, बिलावल कह रहे हैं सर आपकी गेस्ट असमा जी को सलाम, बेस्ट विशेस.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: अच्छा जनाब, और इसके अलावा बहुत सारे दोस्त हमारे गयासुद्दीन बलबन जो है वो हमें सुन रहे हैं. इसके अलावा भाई यूके से नादिया मलिक सुन रही है. भाई कौन है वो, सस्पेंस में आ गई. उन्होंने कहा कौन है भाई.
1: अच्छा,
0: तो बिलाखिर मैंने कहा भाई ये है. इसके अलावा मिशी हमें सुन रही है. भाई मिशी क्या हाल है आपके, ठीक है, खैरियत से. मिशी को भी हमने बुलाना है अपने शो में. बड़ी जबरदस्त मॉडल भी है, एक्ट्रेस भी है वो. अच्छा जी, संजीदा के बारे में मैं आपको क्या बताऊं. संजीदा जी वालेकुम अस्सलाम, और वो आपकी बहुत बड़ी वाली पंखा, बहुत बड़ी वाली फैन है, और मेरे ख्याल से आपकी बेस्ट फ्रेंड भी है.
1: मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है.
0: कोई क्वालिटीज उनकी बताएं, क्या चीज है जो उनको इनकी जहर लगती है ये बताएं. होता है ना बात दोस्तों में, होता भाई
1: नहीं,
0: हर वक्त मुफ्त में लगी रहती है, फुल टाइम मंगवाती रहती है.
1: 11 साल से हमारी लड़ाई नहीं है, मुझे लग रहा है आज हो जाएगी.
0: आज हो जाएगी, चलो ठीक हो गया, ऐसा ना हो. अच्छा जी, इसके अलावा मिसेज गफार भी सुन. मिसेज गफार क्या हाल है आपके, ठीक है, खैरियत से. बहुत सारा सलाम दुआ जो है ना असमा जी आपको उन्होंने दी.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: अच्छा जनाब, और उनकी तरफ से क्वेश्चन भी आ गया आपसे, कहने की ये नहीं पूछूंगी कि आपको आरजे बनने का ख्याल क्यों आया और कब हुआ, ये बताइए किस आरजे को इतना सुना कि रेडियो माइक को ज्वाइन करने का ख्याल आया. नाम बता सकती हैं आप, क्या सवाल पूछा है आपने, वाह वाह. चलें जी बताइए आप.
1: जी, जहां मैं आज बैठी हुई हूँ ना, इसको इस चैनल को ही इतना सुना था. अजमल छोबी है, सरदार खान है, इनको इतना सुना था मैंने कि मैं, मेरा भी दिल चाहता. और सबसे बड़े मजे की बात बताऊं, जब मैं कॉल्स करती थी ना तो मुझे कॉल्स नहीं मिलती थी, शो खत्म हो जाता था, तो मुझे इतना गुस्सा आता था. मैं कहती थी एक दिन मैं भी आरजे बनूंगी और फिर मैं भी ऐसे ही करूंगी सबके साथ.
0: तो आप ऐसे ही कर रही, लोग शिकायत कर रहे हैं वैसे कि यार कॉल ही नहीं उठाती, मैं जवाब देती हूँ, ऐसा क्या सही है, ऐसे ही कर रही
1: है. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर रही.
0: अच्छा अच्छा, पक्की बात है ये.
1: पक्की बात है.
0: अच्छा ठीक हो गया जनाब. तो कोई नाम नहीं बताया आपने, एक जो खास तौर पर जिसकी बहुत बड़ी बड़ी फैन हो आप.
1: बहुत बड़ी फैन शफकत बुखारी थे, 90 नाम तो याद नहीं आ रहा मुझे चैनल का भी.
0: चलो कोई नहीं,
1: भट्टी साहब थे, अजमल शोभी साहब थे, सरदार खान साहब थे, ये चार जो है ना ये मेरे
0: सारे अच्छे. भट्टी साहब को भी मैं जानता हूँ, बहुत जबरदस्त. और भट्टी वही जो आजकल भी शो कर रहे हैं.
1: हाँ जी, वो
0: इस्लामाबाद से करते हैं.
1: जी जी बिल्कुल,
0: जबरदस्त जबरदस्त आ रहे हैं वो यार,
1: भट्टी डॉलर कमान.
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह.
1: हाँ जी.
0: अच्छा जनाब, आपके पास बड़े मैसेज आ रहे हैं, जरा नाम शामिल करें, कौन कौन सुन रहे हैं आपको.
1: जी जी, मारिया सुन रही है इटली से मुझे, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और रेडियो पाकिस्तान की आरजे रह चुकी हैं. मेरी भाभी सुन रही है एनी, और कह रही है बहुत अच्छा शो जा रहा है, और कहती है कि बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर. और
0: बाकी वाले बताने वाली बात नहीं क्या? बताते बताते, कोई नहीं, अपने दोस्त हैं सारे, हम एफएम 100 पे परहेज नहीं करते, बताते सारी चीजें.
1: नहीं नहीं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, बहुत शुक्रिया एनी.
0: भाभी जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका. और इनके बारे में अच्छी बातें, पुरानी बात, बुरी बातें सब लिख के भेज सकते हैं आप लोग. अच्छा जनाब, तो 11 साल गुजर गए आपको एफएम 100 पे, उससे पहले भी कहीं काम किया आपने?
1: जी प्राइवेट चैनल पे 4 साल मैंने किया है. जी बिल्कुल.
0: तो प्राइवेट का क्या नाम था, कोई कौन सा चैनल था वो?
1: नहीं, वो कराची का नहीं था, 104 कश्मोर के नाम से था वो. अच्छा, कश्मोर अच्छा, का चैनल था लेकिन अच्छा, कराची से करती थी मैं.
0: क्या बात है, सिर्फ कश्मोर में सुना जाता था?
1: नहीं नहीं, वो तीन सूबों में एक साथ सुना जाता था, अंदरून सिंध, अंदरून बलूचिस्तान और अंदरून पंजाब.
0: अंदरून सिंध ईद, अपनों में ईद मनाने.

0: तो याद आ गया मुझे क्या है अंदरूनी मुल्क, बहुत जबरदस्त।
1: हाँ जी,
0: अच्छा जनाब बिल्कुल मैसेज करते रहे, साथ साथ गाने भी मैंने सुनाने हैं, नेक्स्ट ट्रैक की गाने बढ़ते हैं और शामिल करते हैं खूबसूरत सा गाना, और उसके बाद आएंगे अस्मा जी हमारे साथ, अस्मा हुसैन 101 की आरजे।

0: जनाब, वेलकम बैक टू एफएम 100 आयाज अहमद के साथ, और साथ ही साथ मैसेजेस पहुंच रहे हैं के एच आई स्पेस, टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर। बिलावल जी मुस्तकिल हमें मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 101 के अलावा भी किसी चैनल पर काम करते हैं कि नहीं, बताया उन्होंने प्राइवेट चैनल था और क्या कह रहा, कश्मोर
1: जी, 104 कश्मोर।
0: अच्छा, उसमें क्या होता था कश्मोर में, सिंधी गाने होते थे, उर्दू थे, क्या थे?
1: नहीं, वहाँ पे दरअसल सिंध, ज्यादातर सिंधी लोग सुनते थे, तो शुरू में तो इतना मजा आता था, मतलब मैं
0: सिंधी अच्छा थी
1: नहीं, सिर्फ ही भोलड़ो आए,
0: भोलड़ो आए, मैंने भी वैसे तुक्के से बोली है, लेकिन ये है कि मैंने क्योंकि पढ़ी थी ना,
1: लेकिन पता है उनकी कास्ट ऐसी होती थी, मैं इतनी गलत कास्ट बोलती थी, सब इतना हंसते थे, कहते थे आप बिना लतीफों के हमें हंसाती हैं।
0: वाह वाह, क्या बात है। तो यानी कि उर्दू में होता था?
1: जी उर्दू में, मैं उर्दू में ही करती थी।
0: चलिए अच्छी बात है जनाब। तो भाई वो कश्मोर में, और गाने भी आप यही पाकिस्तानी सारे फिल्मी गाने के?
1: नहीं, इंडियन सब कुछ चलता था, सब चलता था वहाँ पे।
0: तो ये हमारे यहाँ क्यों नहीं चल रहा भाई, अभी भी चल रहा है, इंडियन भी चलते हैं अभी?
1: जी जी बिल्कुल चलते हैं, और मेरा तो बीजीएम
0: बोल दे क्या
1: वो था, तूने मारी इंट्रियां तो दिल में बजी गई।
0: वाह वाह वाह वाह, मैंने कहा तंडोले मेरा मंडोले, ये वाला चल रहा है मेरा ख्याल।
1: नहीं,
0: अच्छा चलो, बहरा कुछ भी, वो पहले हमारे भी चलते थे इंडियन सॉन्ग, लेकिन फिर बाद में जब पाबंदी हुई

0: जी।
1: तो फिर जो है अब हम नहीं प्ले कर सकते, अब हम पाकिस्तानी गाने, इंग्लिश गाने, यूके बैंड, तो इतनी थोड़ी आजादी दी हुई है थोड़ी सी, बस इंडियन जो प्योर जो कंटेंट है वो हम नहीं चला सकते,
0: वो नहीं चला सकते।
1: और एक लिहाज से सही है, वो भी तो नहीं चला रहे,
0: बिल्कुल सही है।
1: चलिए जनाब जी, अच्छी बात होगी। और संजीदा जी, सवाल पे सवाल करे जानी भाई, कह रही भाई ऐसी क्या क्वालिटी है आप में कि आप प्रोग्राम को जो है वो एंड तक जो है वो लिसनर आपको सुने, क्या वजह? और उन्होंने मेरी मिसाल दे दी भाई, गाने उनको पसंद आते हैं और बातें पसंद आ रही, बड़ी मेहरबानी संजीदा जी। हाँ सवाल तो
0: पता है, मेरी जो वजह है ना लिसनर जो एंड तक मेरे साथ रहते हैं वो ये है कि मैं सबको एक तो एक साथ लेकर चलती हूँ सबको, मतलब
1: एक साथ लेके कहाँ जा रही है सबको?
0: नहीं नहीं,
1: अच्छा
0: मरी तो जा नहीं सकती, मतलब आखिर तक 5 बजे से 7 बजे तक
1: ठीक,
0: मैं सबके नाम लेती हूँ। अगर आखिर में टाइम नहीं होता ना तो मैं मैसेज नहीं पढ़ती, लेकिन नाम जरूर लेती हूँ कि इन्होंने मुझे मैसेज किया है, ये यहाँ से है। तो इस तरह, क्योंकि इतना आजकल के इतने बिजी टाइम में इतना लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो अपने दोस्तों से तक से मिल नहीं सकते, लेकिन हमारे लिए टाइम निकालते हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि उनके मैसेजेस, उनके जितने भी मैसेज आते हैं, कॉमेंट्स आते हैं, वो मैं प्रोग्राम में शामिल करूँ। अगर पूरा मैसेज नहीं शामिल कर सकती तो कम अज कम उनका नाम शामिल करूँ, और सबको एक जैसा समझती हूँ, किसी को ज्यादा किसी को कम।
1: ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात। आरजी की, सारे आरजी की वैसे यही कोशिश होती है सबके साथ
0: बिल्कुल
1: जो है ना वो यकसां सलूक होना चाहिए, है ना?
0: बिल्कुल।
1: अच्छा ये बताएं आप ख्याल कैसे, किस तरीके की, रिवायती सवाल है, सबसे पहले पूछना चाहिए था लेकिन मैं अभी पूछ रहा हूँ, कैसे किसने कहा कि भाई अपना आसमा तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है तुम्हें आरजे बनना चाहिए? घर वालों ने कहा, किसने कहा? शौहर ने कहा बेटा तुम बहुत बोलती हो जाओ जरा।
0: नहीं उस वक्त तो शादी भी नहीं हुई थी।
1: अच्छा उस वक्त उसके बाद हुई?
0: हाँ जी, 5 साल हुए हैं अभी।
1: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो कैसे ख्याल आया, कैसे गई?
0: ख्याल तो यही सुनकर आया, आरजेएस को सुनकर ख्याल आया। फिर जब फर्स्ट टाइम मैं ऑडिशन के लिए गई, इतना मजा आया मुझे ऑडिशन के वक्त, आप पूछ नहीं सकते, इतनी शर्मिंदगी हुई बाद में, मतलब जैसे अब
1: इंजीनियर मजा आया कि शर्मिंदगी हुई,
0: दोनों चीजें, मतलब शर्मिंदगी में मजा आया ना।
1: अच्छा,
0: कहते हैं ना कि सर्दी और बेइज्जती जितनी महसूस करो आपको उतनी लगती
1: है,
0: मैं बेइज्जती महसूस नहीं करती।
1: अच्छा तो क्या हुआ जरा बताइए हमें।
0: ऑडिशन के लिए मुझे जब प्रोग्राम मैनेजर ने कहा कि आप बोलिए, आप कुछ बोलिए यहाँ पे, तो मुझे नहीं पता था कि वो दूसरे कमरे में हमारे सीईओ साहब भी सुन रहे हैं, तो मैं कह रही थी मैं बोल लूंगी, मैं सही बोलूंगी, देखो उनको नहीं बताना, अगर गलत कुछ कह दिया तो उनको नहीं बताना, सर को नहीं बताना, वो सब कुछ सुन रहे हैं वहाँ पे।
1: अच्छा वो सुन रहे हैं ठीक। अच्छा फिर?
0: और बाद में वो भी इतनी आमना जो थी वो बाद में कह रही है वहाँ तो माइक लगा, स्पीकर लगा हुआ है, वहाँ तो सब सुन रहे हैं आपको।
1: आपने उनकी ज्यादा तारीफ नहीं की? किस आदमी को अक्सर होता ना, उससे बंदा पड़ोस के बंदा बैठा हुआ है इसके सामने, तो मैंने ऑडिशन
0: मेरा इतना गंदा गया था, मैंने कहा था घर आके कि मुझे नहीं बुलाएंगे, लेकिन जब एक हफ्ते बाद कॉल आई,
1: चलो कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं,
0: जब एक हफ्ते बाद कॉल आई ना तो उन्होंने कहा कि आप मतलब ऑडिशन जो आपने दिया वो इतना अच्छा तो नहीं दिया, लेकिन आपकी आवाज की वजह से हम आपको बुला रहे हैं।
1: क्या बात है जनाब, जबरदस्त है जी। नवेद मुगल आ गए, नवेद भाई क्या हाल है? और कह रहे वाकई एयाज भाई मैं आपसे मिल नहीं पा रहा, जबकि आपने बड़ी मेहरबानी सरकार, आप बड़े आदमी नवेद भाई, आप कहाँ मिलेंगे भाई? अच्छा जनाब इसके अलावा यासिर अकबर अली भी हमें जो है वो देख रहे हैं। अच्छा भाई अब आप जरा अयाज अहमद की आईडी पे आ सकते हैं और हमें देख भी सकते हैं, क्योंकि आज जरा आरजे आई हुई है अस्मा हुसैन, तो हमने सोचा है कि जरा वहां पर भी जाएं और आपकी जो है मुलाकात वहां पर कराएं।
0: हाँ जी।
1: तो यहां पर भी आप आ सकते हैं, और थोड़ा कनेक्शन स्लो है ये जरा बता दिया। अच्छा भाई इसके अलावा अयाज अस्मा हुसैन को सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: आवाज बहुत अच्छी है,
0: बहुत शुक्रिया।
1: और दूसरा, अच्छा जनाब इसके अलावा अपने कामों में भी लगी हुई है उम्मीद रुबाब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। एस भट्टी जो है ना वो भी हमें सुन रहे हैं। अयाज भाई हाउ आर यू, तुसी शहजादे हो? अयाज भाई मैं क्या, तुसी भी काम नहीं हो भट्टी साहब, तुसी भी शहजादे हो। और ये गाना शहजादा मुझे याद आ गया, मैं वो गाना आप ही को डेडिकेट करता हूँ भट्टी साहब, लेकिन थोड़ा सा टाइम चेक और कुछ देर की ब्रेक भी है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
2: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
3: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
4: Ab tamam sarkari daron ki payments Jazz Cash app se baasani hongi. Jaise FPR tax, traffic challan, passport fee, gaadiyon ke token tax ya natra fee. Ghar baithe Jazz Cash se. To na koi daftaron ke chakkar aur na koi time ka zaya. Kyunki tamam sarkari daron ki payments ke liye Jazz Cash hai na.
2: 100 FM
5: जैज कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैज कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
6: شرائط ضوابط لاگو ہیں.
2: This program is brought to you by
7: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
8: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا الیکٹرانک جعلسازی سپیمنگ دھوکہ دہی بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا اس سلسلے میں مدد طلب کرنا کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
11: کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا موبائل بیلنس غیر ارادی طور پر بھی ختم ہو سکتا ہے؟ یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہو جاتا ہے لیکن انٹرنیٹ پے ایز یو گو ریٹس پر چلتا رہتا ہے، جس سے بیلنس تیزی سے کم ہو سکتا ہے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایسے غیر ضروری چارجز سے محتاط رہیں. موبائل فون آپریٹروں کی جانب سے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک مفید اور مفت سروس متعارف کرائی گئی ہے. اس سروس کے ذریعے آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہوتے ہی انٹرنیٹ کا استعمال خود کار طور پر بند ہو جائے گا تاکہ آپ کا قیمتی بیلنس محفوظ رہے. سروس فعال کرنے کے لیے درج ذیل کوڈز ڈائل کریں. جیز صارفین کے لیے *275#، زونگ صارفین کے لیے *4004#، یوفون صارفین کے لیے *6611#، اور ٹیلینور صارفین کے لیے *342#. اپنا بیلنس محفوظ رکھیں اور غیر ضروری چارجز سے بچیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پیٹیے.
12: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
13: facebook.com/fm247365
14: active yummy adorable zabardast
15: ye pyaas to suno yaar.

0: जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ कर रहे हैं मैसेजेस भी 3636 पर भी, और इसके अलावा अयाज अहमद की आईडी पर जाके आप असमा हसन के देख भी सकते हैं और उनसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं। अच्छा जनाब, बातें क्योंकि आज जरा ज्यादा होंगी, गाने थोड़े से जरा कम इसलिए कि गेस्ट टाइम ही है, इनसे जरा गपशप ज्यादा करेंगे, गाने तो सुनते रहते हैं हम वैसे भी। तो असमा जी से मजीद कुछ बात पूछते हैं। कहनी बिलावल पूछ रहे हैं कि असमा जी आपने मूवीज में काम, अरे नहीं करें सरकार, मूवीज में काम नहीं किया, एक्टिंग भी मेरा ख्याल से एक्टिंग नहीं की ना,
1: नहीं एक्टिंग नहीं की, एक्टिंग स्कूल की हद तक की है,
0: स्कूल की हद तक की है या शोर की हद तक की है, उनके सामने एक्टिंग की है थोड़ी सी, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा जी, और कुछ कुछ नहीं लिखा आपने, राइटर आप भी हैं बता रही हैं?
1: हाँ, शेर और शायरी थोड़ी बात कर लेती हूँ।
0: अरे कोई अच्छा सा कोई शेर हो जाए, बाकी बातें बाद में होंगी, पहले कोई अच्छा सा शेर हो जाए।
1: अच्छा एक शेर हो जाए, इस जहाँ से दूर आसमान की तरफ,
0: हाय हाय हाय हाय,
1: इस जहाँ से दूर आसमान की तरफ, ले जा मुझे तू छीन के दुनिया के दुखों से,
0: हाय हाय। वाकई में ये तो बड़ी जबरदस्त शेर हो गया, लेकिन दुख भी तो जिंदगी का हिस्सा है, वो अगर नहीं होंगे साथ तो सुख का कैसे पता चलेगा।
1: हाँ बिल्कुल ऐसे
0: ये बात भी है,
1: बिल्कुल ऐसे
0: यार। राइट जी, तो बिल्कुल बातचीत होती रहेगी, लेकिन दोस्तों गाने भी जरा हमें प्ले करने होते, तो नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं। और आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि चार स्पेस टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर।

0: भाई जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं एफएम 100 अयाज अहमद के साथ, और साथ साथ मैसेजेस टिका के पहुंच गए हैं, बल्कि मुझे करीब करना पड़ेगा ये। अच्छा भाई, सैयद जॉन अली जैदी भाई भी आ गए, माँ जमीन हसरी है किस बात पर ये मुझे नहीं पता। आतिफ भाई क्या हाल है, आतिफ अल्ताफ कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अरकम भाई कैसे हो, कभी कभी करते हैं आज भाई काम, मैं कभी कभी करता हूँ, नहीं करो यार, मैं तो रोज आता हूँ यार। हाँ ये कह सकते हो, कभी कभी मैं लाइव जो है ना वो फेसबुक पे चला जाता हूँ। अरकम भाई भी कमाल बंदे हैं और टिका के काम करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा समी शेख कह रहे हैं अयाज भाई ने प्लान किया हुआ था आपको बुलाने का। हाँ जी बिल्कुल जी
1: जी जी बिल्कुल प्लान किया हुआ था,
0: अचानक मैं नहीं बुला था ना।
1: अचानक तो मैं भी नहीं आती,
0: सही बात है यार, प्लान
1: कोई
0: करके
1: नहीं आता, कोई भी नहीं आता,
0: सही बात है। अच्छा अयाज भाई क्या लिखे, बाइक का स्टैंड निकाल कर फोन पर लगा तुम्हारे, मैं सदके जाऊं अजीब भाई तुम्हारी जुगतों के प्रभाव, क्या बात है भाई, किधर गायब हो जॉन भाई, मैं इधर ही हूँ बस, जरा लाइव जरा कम कम जाता हूँ जरा। अच्छा क्योंकि आज असमा आई थी, मैंने कहा चलो सबसे मुलाकात भी करा देता हूँ हमारी जबरदस्ती आरजे, क्योंकि आरजे जो है ना वो ज्यादातर पीछे रहते हैं।
1: हाँ,
0: और वो बिहाइंड द सीन वाला काम होता है, लेकिन आज आप सामने आ गई। वैसे क्यों नहीं, आपका दिल नहीं चाहता, आप जाती है लाइव फेसबुक जाती है कि नहीं जाती?
1: नहीं नहीं फेसबुक पे लाइव नहीं जाती, मैं वैसे वीडियोस बना के डाल लेती हूँ।
0: तो जाया करें ना जरा फेसबुक, अब मना तो नहीं करते एफएम वाले कि वो भाई नहीं जाओ,
1: ऐतराज हो जाता
0: है। हाय तो हर चीज पे ऐतराज भाई, एफएम मन वाला ऐसे नहीं करो यार, ऐसा लग रहा है आज दो आरजे शो कर रहे हैं, ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी फिट है कैमरा, ज्यादा करीब ना करेंगे माँ जमीन, कुछ मेरे खास से डर लग रहा है ज्यादा करीब करना तो, मगर मैं क्या करूँ, हमारी जरा नजरें ना थोड़ी सी जरा। अच्छा जी ये कौन गेस्ट है, जैदी भाई ये आरजी है, बहुत जबरदस्त आरजी है, अस्मा अस्मा जनाब। देखिए अस्मा जी मैं आपको बार बार आपका जो है ना तारुफ करवा रहा हूँ,
1: बहुत शुक्रिया बहुत। अच्छा शुक्रिया।
0: आए सदफ जी क्या बात है, सदफ इब्राहिम कहनी है एवरी वन लव्स अयाज, आई सो स्वीट सदफ, आप खुद इतनी स्वीट है ना। अच्छा जी बाइक का स्टैंड पे हंसी आ रही समी शेख को, वाह वाह भाई। अभी क्या क्या बन्नों की बात हो रही थी, आपका किसी फैन ने डिमांड की है कि दोबारा स्टार्ट कर दो। अच्छा यार चले जाना अरकम भाई, बस बिस्मिल्लाह करो तुम। अच्छा जी इस जगह कमेंट में डिमांड आई है, अच्छा जी चले जनाब, बस डिमांड होनी चाहिए मैं कह रहा हूँ। शहजादे दिली शुक्रन शुक्रन कह रही है भैया, कोई मत बात। अच्छा भाई एक और आरजे आ गए,
1: अच्छा
0: बहुत प्यारे आरजे, और ये बात अब मैं इनका नाम जो है ना हाथ बांध के मैं पढ़ता हूँ,
1: चले आपकी जगह मैं हाथ बांध लेता
0: हूँ, हम सभी हाथ बांध लेते हैं। मुजफ्फर अहमद भाई जबरदस्त 105 के जबरदस्त आरजे, और पहले 101 पे भी अपना एफएम 100 पर भी थे,
1: अच्छा
0: और हमने एक दो शो साथ भी किए मुजफ्फर भाई के साथ, कमाल जबरदस्त आरजे,
1: चले खुशामदीद आपको।
0: अच्छा जनाब और नजीब कहीं फैसलाबाद से तो नहीं, नजीब भाई इस दफा जो अगर वो जो मैसेज कर रहे हैं वो नजीब जो है वो कैनेडा में। अच्छा जी अयाज भाई वैसे एफएम 100 जैसी क्वालिटी और दूसरा स्टेशन नहीं है, वाकई में यार इतनी तारीफ कर रहे हो यार एफएम 100 की, तो बहुत शुक्रिया, आप लोगों का प्यार है वो मोहब्बतें हैं, टाइम भी देखना साथ साथ टाइम भी चेक आने वाला है। एफएम 101 पे सॉन्ग्स क्वालिटी भी इतनी खास नहीं होती, अरे नहीं करो यार बुराई नहीं करो यार, वो कर लेंगे अच्छी यार, ऐसी क्या बात है,
1: मैंने मुंह छुपा लिया।
0: नहीं ऐसी बात नहीं है, वो 101 वाले भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं, लाइव आते हो तो पता चलता है कि जिंदा हो जॉन भाई, ये बात तो सही, अच्छी बात की आपने, बाकी इंसान को आते जाना चाहिए लाइव, लेकिन तुम भी रेडियो खरीद लो, थोड़ा खर्चा कर लो, तुम भी कंजूसी की इंतहा की हुई है तुमने, रेडियो खरीद लो यार, उस पे जरा मजा आता सुनने का। मिसेस फारूक कैसे मिजाज हैं आपके। अच्छा जी जिंदगी वंश अस्सलाम वालेकुम भाई लव यू, जिंदगी वंश कौन हो भाई सर, हाँ ये उन्होंने टाइटल देखे ना ऊपर लिखा जिंदगी वंश। अच्छा जी समी शेख कह रहे हैं सर हम तो आए हुए हैं एफएम 100 पे, सर आप पहुंची हुई शख्सियत है, आप कहां कहां नहीं आते। अच्छा जनाब मैसेज पढ़ रहा हूँ आपसे, इंटरव्यू जरा मैं कम कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ लोगों के मैसेजेस इतने आ गए।
1: कोई बात नहीं।
0: अच्छा साबिर भट्टी साहब का भी मैसेज आ गया, शहजादे हो आज तो पहाड़ों पे चढ़ जाओ, नहीं यार नहीं वही गाना है ना पहाड़ों,
1: तुम चले आओ
0: पहाड़ों, यार वो बेचारे बड़े दिनों से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मेरे पास वो क्यू शीट में होता नहीं है, चले यार एक दो दिन में मैं साबिर भाई मैं लेके आता हूँ आपके लिए, क्या याद करेंगे आप। कादिर बख्श कह रहे हैं अयाज भाई आपको और आपके गेस्ट को और सब सुनने वालों को सलाम, वालेकुम
1: सलाम,
0: और बिलावल भाई को भी और संजू जी के भी सलाम कह दिए। राजा अनवर आ गए, अस्मा हुसैन कैसी हैं आप, हंसी बहुत अच्छी है माशाल्लाह राजा भाई, राजा भाई बहुत फैन है आपके हंसी के, और वाकई में हंसी नो डाउट आपकी बहुत अच्छी है, वहाँ पे एफएम 101 पे भी करते हैं तारीफ, क्यों नहीं करते लोग,
1: हाँ वो सब यही कहते हैं आपकी हंसी सुनने ही तो आते हैं हम,
0: आए हाय क्या बात है, चलो जनाब ये अच्छा हो गया। अच्छा जी इसके अलावा सलाम कैसे हैं, अस्मा को भी सलाम जनी की तरफ से,
1: सलाम जनाब कैसी है
0: नूर, वहाँ पर भी मैसेज करती है कि नहीं करती
1: है, बिल्कुल करती है।
0: चले भैया थोड़ी देर के लिए टाइम चेक और एक मिनट की ब्रेक, तो दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद।
2: FM 100's time check. It's 10 p.m. This program was brought to you by
3: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
4: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी जैसे FPR टैक्स ट्रैफिक चालान पासपोर्ट फी गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी घर बैठे जैस कैश से तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना
2: 100 FM
5: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी मौका अभी भी बाकी है अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना
6: शराइत तो जवाबित लागू है
2: facebook.com/fm247365 FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान
7: Active, yummy, durable, zabardast. Kya pyaas to suno yaar.

0: फरमाए जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस पहुंच रहे हैं 3636 पर, और इसके अलावा आप मेरी आईडी पर भी मैसेज करें। अकबर भाई भी आ गए। अकबर भाई कैसे मिजाज हैं? ठीक है, खैरियत से हैं। कुरतुलैन आ गई, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू कुरतुलैन? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप बताइए तबीयत कैसी है? ठीक है। समी कहना थोड़ा जरा शर्मा रही है, तो ये भाई अस्मा जी क्यों शर्मा रही है ये बताएं आप सबसे पहले। उनको ऐसा फील हो रहा है?
1: नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं शर्मा रही।
0: ऐसा नहीं है भैया, थोड़ा दूसरे घर में, किसी भी पहली दफा घर में बंदा जाता है, थोड़ा जरा एहतराम होता है,
1: तबीयत होती है।
0: तेरी तरह ढीठ थोड़ी होते हैं जो इसी तरह घूम रहे हो। अच्छा जनाब, इसके अलावा मैडम का फेस ग्लो कर रही है, माशाल्लाह लाइटें अच्छी हैं,
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर मत लगा दीजिएगा,
0: नजर मत लगाओ, लाइटें भी अच्छी हैं और प्रॉपर उनके ऊपर जो है ना ये एसी भी पड़ रहा है ताकि ठंडा दी।
1: हाँ बिल्कुल।
0: अच्छा जी, शाहिद अहमद की भी मैसेज आ गया, अस्सलाम वालेकुम। मिर्जा शुजात कह रहे हैं दो देगे बढ़ाऊंगा बड़ी इमाम पर, आज लाइव आए हो। सर ये बाकी सचमुच कर रहे हो या वैसे ऐसी मजाकन बोला? अच्छा जी, आज अस्मा आप यहाँ खुल के बात कर सकती हैं, FM 100 हमारे दूसरी फैमिली है, समझे, बस एक लिमिट में, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ओवर हो जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कैप ऑसम। अरे मिसेस फारूक बहुत शुक्रिया। और समीशे कह रहे हैं यार भाई आपकी मोहब्बत है, मुझे हंसी आती है आपकी बात पे। बेटा थोड़ा सा शीशा देख ले, क्या क्या लगाएगा अभी मेरी बात पे हंसी आ रही है, शीशा देखेगा कैकों के साथ। रेडियो ऐप डाउनलोड कर लिया, आते भाई कह रहे हैं डाउनलोड, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ा बहुत शुक्रिया। रानी हुसैन सलाम, भाई टोपी अच्छी लग रही है, ये हमारी अपनी बातें शुरू होगी, इंटरव्यू तो साइड पे होगी, इसलिए मैं लाइव नहीं जाता, पता है ये, इसलिए मैं यहाँ लाइव आता हूँ तो इन सबके साथ में मगन हो जाता हूँ।
1: नहीं अच्छी बात है ना।
0: और आपसे पूछना ही भूल गया कि यार आपका टारगेट क्या है, आपने उसके बाद कहा लंदन में जाके कहीं शोज करने, क्या क्या आपने जिंदगी में एम बनाया हुआ, ये सारी रिवायती सवाल होते हैं, पूछने होते हैं ये आरजेस से इस तरह के लोगों से। चाय कहाँ है आप दोनों की? चाय बेटा हमने तो पी ली है, ठीक है ना,
1: ये देखिए।
0: हाँ अख्तर भाई बिल्कुल चाय पी ली हमने, और आज मैंने इनको कहा है कि भाई चीनी के बगैर पीनी है, पापे नहीं लाया मैं, माजरा चाहता हूँ आसमान जी, अगर मुझे पता होता मैं पापे भी लिया था, डुबो डुबो के ना चाय के साथ पीने का अपना मजा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा वैसा मजा नाश्ते का हो ही नहीं सकता,
0: हो ही नहीं सकता,
1: चाय पापे, वाह वाह वाह।
0: अच्छा जी, समी तनकीद करते हाथ हौला, अरे नहीं करने दे, मैं हूं इधर, आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा जी, टोपी पे हंस रहे हैं समी शेख, चले जनाब हंसते मुस्कुराते रहे। रिजवान जैदी मेरा भाई आ गया है, रिजवान भाई कैसे हैं? रिजवान भाई का शो सुना आपने कि नहीं सुना? रिजवान जैदी का
1: नहीं,
0: अपने अलावा किसी को नहीं सुन रही, बहुत प्राउड घूम रही
1: है। नहीं मैं आपको सुनती हूं, आपको सुनती हूं मैं,
0: मेरा भी कोई पता नहीं कब सुना आपने, करोड़ों साल बाद जाके, वो भी किसी के कहने पे।
1: नहीं
0: हराम है आपने सुना?
1: नहीं नहीं, मैं काफी टाइम से सुन रही हूँ। अब के दौर के जो फेवरेट आर्ज है ना, एक जो है लो दसो सोने हो,
0: अच्छा वो क्या नाम है,
1: नदी मुख्तर,
0: ओहो वो
1: और एक लगी है प्यास तो सुनवाया,
0: क्या बात है क्या बात है। रिजवान भाई को भी सुनिएगा। वालेकुम सलाम रिजवान भाई, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, खैरियत से है। अच्छा जी, इसके अलावा माशाल्लाह मैडम हंसती रहे, चलिए भाई बहुत दुआएं दे रहे हैं सैयद जॉन,
1: मैं इतना भी ना हंसूं कि वो हैदराबाद
0: पागल हो गई बच्ची। अच्छा इसके अलावा HP सेलर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? फरीन शहजादी भी आ गई माशाल्लाह, क्या हाल चाल है? और हम दोनों को सलाम दुआ कह दिया। अयाज सर आपसे अयाज खान ऑप्टिक पर मुलाकात हुई थी, मेरे हम नाम से मुलाकात हुई थी। अच्छा जी, रिजवान भाई कह रहे हैं कैसे मिजाज है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, आरजे की मजबूरी है, इदारे के खिलाफ नहीं बोल सकते। अरे कोई नहीं, हम अपनी बातें करने दो, हमें करने दो, तुम इसमें मत फंसाओ। मैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अब्दुल वालिद का
1: मैसेज।
0: अच्छा जनाब, इसके अलावा रानी हुसैन, समी शेख, कुरतुलैन, हनीफ का भी मैसेज आ गया। मुझे ये बताएं आप दोनों ने क्या है मैच ट्राई किया है? मैच क्या पूछनी, फुटबॉल मैच का पूछनी, क्या किया है?
1: नहीं अच्छा, वो कपड़ों का कह रही होंगी।
0: नहीं नहीं भाई, ये ब्लैक है ये ब्लू है, जमीन आसमान का फर्क है। फरीन शहजादी, मैं आ गई अयाज जी, क्या फरीन जी क्या बात है आपकी, क्या बात है, चले अयाज भाई आई एम साइलेंट। नहीं नहीं लिखो लिखो लिखो ऐसी बात। अच्छा जनाब, आप लोग मैसेज करते रहे, मैं जब तक जरा इनसे जरा और थोड़ी सी जरा गपशप कर लूं। अच्छा ये बताओ, घर वालों की भी सपोर्ट रहती है आपको कि या नहीं, क्या उसके जरा बारे में बताएं मुझे।
1: बहुत ज्यादा घर वालों की सपोर्ट है तभी मैं कर रही हूँ।
0: शाबाश, ये बाज लोग ऐसे भी हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं जो सपोर्ट नहीं थी, फिर उन्होंने जबरदस्ती किया, फिर लोगों ने पसंद किया, फिर वो उन्होंने एक्सेप्ट किया।
1: नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि प्राउड फील करते हैं मेरे घर वाले तो मुझ पर।
0: चलें जबरदस्त होगी बात ये। अच्छा जनाब, नेक्स्ट ट्रैक की जानी बढ़ते हैं, और ये गाना मैं आपको डेडिकेट कर देता हूँ, बहुत ही जबरदस्त था और इनका फेवरेट भी है, और वो है कैसे,

0: Full Volume with Ayaz Ahmed. 9 to 11, Sunday to Friday. It's a party that won't end. Oh, so loud.
1: Right, Janab, welcome back to Radio FM 100. और जनाब इतने सारे मैसेजेस पहुंच गए हैं। गयासुद्दीन बलमन ने भी एक अच्छा सवाल किया है, कह रहे कि भाई असमा जी, अगर आप शो करते हुए कुछ तब्दीली चाहती हैं तो क्या तब्दीली होगी, क्या करना चाहती हैं?
2: शो करते हुए तब्दीली, अगर मैं जब तक यहाँ एफएम 101 पर हूँ तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकती।
1: इतने
2: जैसे चल रहा है, हाँ अच्छा। जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा।
1: ठीक है।
2: तो वैसे अगर मैं अपने पर्सनली चाहूंगी तो ये चाहूंगी कि कोई पाबंदी इतनी ज्यादा ना हो, बस जो लोग सुन रहे हैं हमें उनकी अहमियत जो है ना वो मैनेजमेंट को होनी चाहिए, जो कि बहुत कम है।
1: बेहतरीन बात, बहुत अच्छी, क्योंकि हम तो शो उनके लिए करते हैं,
2: उनके लिए करते हैं। बिल्कुल
1: बिल्कुल सही बात है। और तो एक बात बताऊं, अगर आप इतनी पाबंदियां आरजेस पे लगा देंगे, इतना कुछ कर देंगे तो खुल के उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं हो पाएगी।
2: बिल्कुल नहीं हो पाएगी।
1: तो ये है कि आप करें, एक रूल और रेगुलेशन होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि बंदा सफोकेट हो जाएगा, यार भाई एक काम करो नेक्स्ट डे से शो ही नहीं रखो, मैं तो तंगा। मेरे मुझ शुक्र है FM 100 इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि FM 100 के पास है कि ये बात नहीं करनी, ये नहीं करनी, वो हमें पता होता है। इसके अलावा वो कहते हैं भाई हंसी मजाक जो आप फ्री स्टाइल में बात करना चाहते हैं आप करें,
2: बिल्कुल
1: कोई पाबंदी नहीं है।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है असमा को आपके साथ शो पर सुन के। जरीनूर, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। और अयूब अफरीदी कह रहे नाइस अयाज, आपको और असमा हुसैन को और तमाम सुनने वालों को सलाम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: ये अयूब अफरीदी भाई आपका शो भी मेरे ख्याल से सुनते हैं।
2: जी जी बिल्कुल सुनते हैं।
1: और इसके अलावा साबिर भट्टी अयाज भाई, आपको प्रोग्राम सुनकर दिल खुश हो जाता है, बड़ी मेहरबानी सर, आप फूलों की तरह मुस्कुराते रहे। और शहजादी आप ही,
2: आमीन, आमीन, बहुत शुक्रिया,
1: बड़ी मेहरबानी सरकार, बड़ी मेहरबानी। अयूब भाई कितने प्यार से मुझे मैसेजेस करे जा रहे हैं, नाइस अयाज, आज तो बहुत बड़ी हस्ती आपने, इसमें कोई शक की बात नहीं, बहुत जबरदस्त आरजे, और आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आप तशरीफ लाई, आपका भी शुक्रिया,
2: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: अच्छा जी, इसके अलावा मिसेस फारूक को गजलें बड़ी पसंद आ रही है, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मिसेस फारूक कहां गई भाई, बड़े दिनों बाद आपको मैं आपके मैसेज देख रहा हूं। अच्छा जनाब, और इसके अलावा नादिया मलिक जो है ना वो हमें सुन रही है और यूके से, और भाई वो अब से आपके भी जो है ना वो क्या कहते हैं लिसनर बनने वाली है आपका। अच्छा। जो है ना पूरा अता पता ले लिया है किस जगह पे कौन सी साइट पे आप आती हैं, तो वो यूके में जा रहा होता है ना, नेट पे जा रहा होता है।
2: हाँ जी, नेट पे पूरी दुनिया में सुन सकते हैं।
1: अच्छा भाई, यहाँ पर जो टाइम बनता है ना शाम के 5 बजे से कब कितने बजे?
2: 5 से 7 बजे तक,
1: शाम के 5 बजे। अब यूके का हिसाब तुम खुद लगा लो कि वहाँ क्या टाइम होगा,
2: वहाँ क्या टाइम होगा। बिल्कुल
1: ठीक हो गया जनाब।
2: अच्छा मेरे पास भी मैसेज है,
1: जी
2: संजीदा का मैसेज है, कहती हैं असमा आपकी लिसनरशिप सबसे ज्यादा है, वजह यह है कि आप सबको बहुत अहमियत देती हैं, जिसकी वजह से आज तक आप सब आपके साथ हैं। मेरा आपका साथ बहुत पुराना है, आपके आने से पहले भी माइक से दोस्ती हो चुकी थी। कोई एक खूबी एक खामी जो लिसनर अक्सर कर जाते हैं इस शो की बात दूसरे शो में करना, जिसे अयाज और नदीम भी पसंद नहीं करते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ है, आपकी चुगली दूसरे शो में हुई हो, आपको कैसा लगा?
1: हाँ जी, सवाल जवाब दीजिए भैया।
2: हाँ होता है, अक्सर ऐसा हो जाता है कि एक आप एक शो का जो है ना वो दूसरे शो में जाके जिक्र करते हैं, तो अगर अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और खासकर ऐसी बात जो जैसे कभी कभी हो जाता है, कभी कोई मैसेज रह जाता है, कोई बात करनी रह जाती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी और शो में जाकर उसको बोलेंगे कि भाई उस आरजे ने हमारा मैसेज नहीं पढ़ा, उस आरजे ने हमारे साथ अच्छी तरह बात नहीं की, तो ये गलत बात है।
1: बिल्कुल अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। और वैसे भी दूसरे आरजे के बारे में आप यहां उसको पता ही नहीं कि पीछे बैकग्राउंड क्या है, उस बात का क्या चीज हुई थी, किस वजह से उसने मना किया या किस वजह से उसने ये हरकत की।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो आरजे की कोई ना कोई मजबूरी होगी तो उसने ये किया होगा।
2: बिल्कुल, जो इस सीट पे बैठता है ना उसे ज्यादा पता होता है, क्योंकि सॉन्ग्स भी होते हैं, कमर्शियल्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें लेकर चलनी पड़ती है एक साथ।
1: कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा शो होता है ना तो उसमें नदीम भाई की वो आ रहे होते हैं वो शिकायतें, और मेरी शिकायतें उसके शो में,
2: बिल्कुल
1: तो बुरा लगता है। वैसे हम तो खैर दोनों जीते हैं ना, उसको फर्क पड़ता है ना मुझे फर्क पड़ता है,
2: मुझे नहीं पड़ता।
1: बिल्कुल सही बात, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। और जबकि मैं तो शटअप कॉल दे देता हूँ भाई,
2: बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। और बहुत शुक्रिया संजू, आपने बहुत अच्छी बात की, और ये तो 11 साल हो गए इनको मेरे साथ लाइव भी, ये जो है ना शो कर चुकी है
1: माशाल्लाह, ये भी आरजे रह चुकी है
2: माशाल्लाह। आरजे नहीं मतलब गेस्ट के तौर पर, हाँ मतलब हमारी मैम रबिया अकरम जो थी ना, पहले प्रोग्राम मैनेजर थी, जब रिटायर हुई तो वो डीसी थी, तो वो जब भी संजीदा जब भी मिलने आती थी या कोई भी काम के लिए आती थी तो मैम कहती थी इनको लाइव ले लो, तो बड़ा मजा आता था, हम बहुत मजा करते।
1: माशाल्लाह बात करने में तो बहुत ही अच्छी है,
2: बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है।
1: अच्छा जब रेगुलर शो सुन रही हूँ बट मैसेज नहीं, अरे कोई बात नहीं, मिसेस फारूक आप सुन रही है, यही बड़ी अच्छी बात है। बाकी वैसे मैंने कहा जरा पूछ लो खैरियत। अच्छा भाई कुछ सेकंड की ब्रेक, तकरीबन 1 मिनट की ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
3: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے، آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: جناب ویلکم بیک، سن رہے ایف ایم 100 اور ساتھ ساتھ میسجز کریں کے ایچ آر اسپیس، ٹیکسٹ کریں گے، سینڈ کریں گے 3636 پر۔ اور ابھی ایک فیوریٹ آر جے کا ذکر کر رہی تھی اجمل شوبھی بھائی کا، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ ذکر کیا اور شوبھی بھائی تشریف لے آئے۔
2: جی کتنی لمبی عمر ہے، ماشاءاللہ
1: ماشاءاللہ، کیا بات ہے جناب۔ تو آج جناب ان کے ساتھ ذرا سیلفی وغیرہ بھی ہونی چاہیے،
2: بالکل۔
1: اور بتائیے گا، ایسی ایک بات بتاؤں، آرٹسٹ کو اگر آپ بتاتے ہیں نا، کسی آرٹسٹ کو بھی آپ جا کے تعریف کرتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے،
2: بالکل اچھا لگتا ہے۔ اور کچھ آرٹسٹ ایسے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی کسی بھی فیلڈ کا آپ لے لیں، کہ وہ جب ان کے سینئر آتے ہیں نا، تو وہ کوئی اتنا احترام نہیں کرتے، بولتے بھائی ہم اب ہم بھی ہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ ہاں بالکل، لیکن میں تو کہتی ہوں اگر آپ کا کوئی پسندیدہ ایکٹر ہو، آر جے ہو، کوئی بھی کسی بھی فیلڈ کا، تو اس کو عزت دینی چاہیے، احترام دینا چاہیے۔
1: کیا بات ہے جناب، تو آج اسما کچھ اور مانگ لیتی تو دیکھیں وہ بھی مل جاتا۔
2: نہیں، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا
1: چاہیے۔ جی بڑی اچھی بات کی ہے، شکر ادا کرنا چاہیے،
2: بالکل۔
1: اچھا جناب، ساتھ ساتھ بھائی ٹریکس بھی میں پلے کر رہا ہوں اور گانے آپ لوگ پسند کرتے ہیں، لیجیے جناب نیکسٹ۔ یہ آج کل گانا بہت پسند کر رہے ہیں لوگ، ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اس کو ضرور اپنی فیڈ میں رکھا کریں۔
2: اچھا، ویسے تو آپ کی تو ساری پلے لسٹ بہت اچھی ہوتی ہے،
1: بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا۔

0: जनाब, वेलकम बैक. सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं 3636 पर. और जनाब संजीदा जी, गाना पसंद करने का शुक्रिया. और मिस फारूक, आपका भी शुक्रिया. इसके अलावा अयाज तो सबके SMS बहुत अच्छे से पढ़ते हैं. और अस्मा भी, जरी जी, जरी नूर बता रही है, आप भी बड़े शौक से मैसेज पढ़ते हैं.
1: जी बिल्कुल, बहुत शौक से, क्योंकि लिखने वाले इतने शौक से जब लिखते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसको वैसे ही पढ़ें.
0: मैं भी यही सोचता हूँ कि यार एक आजकल के दौर में इतनी मुश्किल से वो बंदा इतनी टाइम निकाल के आपको तो सुन रहा है,
1: बिल्कुल,
0: फिर उस पे मैसेज भी कर रहा है,
1: मैसेज भी कर रहा है.
0: उनको सलाम है, उनको सलूट है, और हमें भी उनको उतनी इज्जत देनी चाहिए, उतना ही प्यार देना चाहिए.
1: बिल्कुल ऐसा ही.
0: तो भाई ये आप लोगों का भी थैंक्स भाई कि आप इतने मोहब्बत से प्यार से जो है मैसेजेस करते हैं. थैंक यू वेरी मच. अच्छा जनाब, इसके अलावा मिसेस फारूक का एक बड़ा अच्छा सवाल है. वो कह रही है जब इतनी सख्तियां हैं वहां पे, तो आप कुछ स्विच करने का, कहीं और जाने का नहीं सोचती किसी और FM पे?
1: नहीं, अब तो आधे हो गए ना.
0: अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में. इतने जुल्म किए हैं, जैसे आप देखें हमारी पाकिस्तानी कौम के ऊपर इतने जुल्म कर दिए हैं.
1: हाँ.
0: अब हम बोलते ही नहीं कुछ.
1: बोलते ही नहीं, आदत हो गई.
0: आदत हो गई. पेट्रोल जो था जब महंगा हुआ,
1: हाँ जी,
0: तो जुम्मे का भी इंतजार नहीं किया उसी वक्त के भाई हो कयामत आ गई भाई, अभी पैसे बढ़ाने पड़ेंगे.
1: बिल्कुल.
0: अब इतने दिनों से पेट्रोल इतना सस्ता हो गया है, पहले से भी सस्ता हो गया, लेकिन अभी जुम्मे का इंतजार हो गया.
1: बिल्कुल ऐसा ही.
0: और अगर मुझे बताएं 50 और 22 रुपए या 5 रुपए कम किया, आंसू निकल जाएंगे, आंसू आ जाएंगे कसम से यार. और वो बंदा कह रहा था मैं जिस फुर्ती से अभी हमने बढ़ाए उस फुर्ती से हम कम करेंगे. फुर्ती नजर नहीं आ रही, फुर्ती बिल्कुल नजर नहीं आ रही सर का, आप पता नहीं क्या नाम है उनका, बिल्कुल फुर्ती नजर नहीं आ रही. अच्छा जनाब, एक और टैक्स के बारे में भी दोस्तों मैं आपको बताऊं कि एक नई कहानी मैंने सुनी. मैं हैरान होता हूं यार, ये क्या करना चाहते हैं आवाम के साथ. ये इनका बस नहीं चल रहा कि आवाम के पैसे हैं क्यों. वो कह रहे हैं कि भाई जो है ना, जितनी कंपनीज, इंटरव्यू तो होता रहेगा, मैं अदर अपने भी किस्से में सुनाता
1: हूं. बिल्कुल बिल्कुल.
0: और आपको भी सुनते रहते हैं, मुझे भी सुनते रहते हैं. लोगों के किस्से, लोगों के मसले मैं जब उजागर करता हूं ना, मुझे ज्यादा मजा आता है.
1: बिल्कुल ऐसा ही है, करने भी चाहिए.
0: अच्छा वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो जितनी कंपनीज है टेलीफोन की, कम्युनिकेशन की, जितनी भी है, जैसे जायज है, दूसरी बहुत सारी.
1: बिल्कुल
0: कह रहे हैं उनको जो पसंद आया ना जगह, जहां पे वो अपना टावर लगाना चाह रहे हैं या अपना कोई वायरिंग करना चाह रहे हैं, जो भी इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं, वो भाई जाएंगे और फटाफट उसे कहा, वो गवर्नमेंट को कहेंगे भाई ये जगह में पसंद आ गई, वो जो मालिक है उसको कहेंगे मैं निकलो यहां से, बताइए.
1: हाँ।
0: मतलब कोई पैसे वैसे दे देंगे उसको, लेकिन ये उसकी चीज है, उसकी कोई अहमियत नहीं है,
1: उसकी कोई अहमियत
0: कि भाई ये मेरी खरीदी हुई चीज है, मैंने मरने तक यहीं इस घर में मैं रहूंगा.
1: नहीं नहीं,
0: उसने सोचा होगा ना बंदे ने,
1: बिल्कुल ऐसा सोचा होगा, लेकिन दूसरे को क्या फर्क पड़ता है.
0: तो ये कानून वो पास करवाने जा रहे हैं, सेनेटरों ने तो कर दिया है, अब असेंबली में वो तो पलवाशा जी का शुक्रिया पीपीवी की है, उन्होंने इस पॉइंट को जो है ना रेस किया.
1: गलत बात है ना.
0: गलत बात है दोस्तों, जमा पूंजी होती है.
1: बिल्कुल.
0: और अगर आप बाकी जगह पसंद आ गई है, एक मिसाल है 1 करोड़ की जगह है या 2 करोड़ की जगह, तो डबल पैसों में लो, फिर 2 करोड़ की 4 करोड़ की खरीद लो, क्या आपको पसंद आई है ना.
1: ऐसा करना चाहिए.
0: अगर कानून में ये चीज है तो फिर तो मैं कहूंगा ठीक है. और अगर आप 1 करोड़ की चीज 50 लाख में लेंगे तो फिर तो बहुत ज्यादा
1: है, बहुत ज्यादा.
0: जिसका यही चांस है, मैंने तो अंदाजन मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है ऐसे ही है. एक ही करोड़ की चीज 50 लाख में लेंगे.
1: जी जी.
0: अल्लाह रहम करे भैया, अल्लाह रहम करे, और इस गवर्नमेंट से अलमिया हम सबको अपनी हिफाजत में रखे. जॉन भाई आगे हमारे पास. सलीम भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. दोबारा भाई, दोबारा पियेंगे चाहिए काफी. सलीम भाई बहुत शुक्रिया. सलीम जॉन के लिए बहुत सारी तालियां, इतनी मोहब्बत से जो है ये हमें चाय दे के गए हैं.
1: हाँ जी.
0: और बड़ी टेस्टी बनाई हुई थी ये.
1: जी बहुत अच्छी थी.
0: अच्छा जनाब, तो वापस आते हैं जरा हम अस्मा की जाने. अस्मा आप ये बताइए कि अब क्या फ्यूचर में क्या सोचा है कि भाई क्या बस आप आरजे ही रहना है, कुछ प्लान किया आपने, कुछ और भी कुछ राइटर बनने का सोचा हो, कुछ ड्रामे लिखने का सोचा हो, फिल्म लिखने का सोचा हो?
1: नहीं, इतनी बड़ी बड़ी सोच अभी नहीं आई है. तो अभी जितनी हूँ उतनी सोच.
0: माशाल्लाह अभी पूरी है आप, माशाल्लाह ऐसे बात नहीं.
1: नहीं नहीं, अभी आरजे ही ठीक हूँ अभी तक.
0: अच्छा ठीक है. अच्छा इसके अलावा आप वॉइस ओवर का बता रही थी.
1: हाँ जी, वॉइस ओवर भी करती हूँ, और संजीदा ने सवाल भी पूछा, वो मुसलसल हमारे साथ हैं. जी, वो पूछ रही थी कि दोनों चीजों में क्या फर्क लगा आपको, डबिंग में और रेडियो?
0: बताइए जनाब उनको.
1: फर्क देखें, दोनों ही आवाज की दुनिया है. डबिंग में भी हम
0: आवाज की दुनिया के दोस्तों.
1: हाँ जी,
0: ठीक है.
1: तो फर्क तो इतना, बस इतना है कि वहाँ आवाज हमारी जो है ना, वो लोग देखते भी हैं ड्रामों में, यहाँ पे सिर्फ सुनते हैं, वॉइस ओवर में देखते भी हैं. तो ये फर्क है बस, बाकी तो दोनों चीजें सेम लगती हैं.
0: मैंने भी एक मैंने किया था, वो इल्जाम एक ड्रामा था मेरे ख्याल से उसका था, उसमें मुझे जो वो था ना, क्या नाम है, जो डबिंग करने का मुझे मजा आया, लेकिन क्योंकि पैसे कम थे तो इसलिए मुझे टाइम वहां ज्यादा देना पड़ता.
1: सही.
0: तो मैं इस वजह से वो मैंने सच्ची बात बोल दी होने की, तो वो बाद में मुझे बुलाते थे, मैं बोला यार या तो पैसे अच्छे करो, हाँ, तो बंदा टाइम दे तो फिर
1: टाइम दे, बिल्कुल।
0: तो वो बंदा वो टाइम एक्टिंग पे या किसी और जगह लगा ले, लेकिन ये है कि वो जरा कंजूसी से दे रहे होते हैं पैसे,
1: बिल्कुल ऐसा ही है,
0: हर एक आदमी का काम है वैसे, आपको नहीं कहना माशाल्लाह आप तो वो है, लेकिन ये खवातीन तो वैसे कर सकती है, मतलब वो होता है ना टाइम,
1: बस उसमें ये है कि ड्रामों में अलग अलग जैसे वॉइस निकालनी पड़ती है आपको, कभी भारी कभी हल्की।
0: नहीं मैं एक बात बताऊं, है दिखने में आसान लग रहा है लेकिन है मुश्किल,
1: मुश्किल है,
0: जो फेस एक्सप्रेशन है वो आपने उसी तरह बोलना।
1: हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे शौक जो है ना वो कार्टून डबिंग करने का, जो अभी तक मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि मुझे उसमें ना आवाज बिल्कुल ही चेंज करनी पड़ती है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: चले जनाब, मुझे लगता है कि वो उसमें कामयाब होंगी आप।
1: हाँ कोशिश तो है।
0: अच्छा अच्छा, मैं एक बात और भी नोट किए, उसमें थोड़ा सा पागलपन भी चाहिए
1: जी।
0: वो अब जैसे चीजें वो अब मार रहा है, हाथ मार रहा है किसी को, अब मैं भी ना मैं बोलूँ यार देखो ये जो हाथ मार के जो उसकी आवाज आई है ना वो कुछ, हाँ। और इस तरीके से, तो मेरा जो एडिटर था ना वो जो कर रहा होता था, डब कर रहा था मेरे साथ, वो बेचारा तंग आ गया कि अयाज भाई यार आप कहां से लाते हो यार। मैंने कहा देख उसने ये मारा है ना मेज पे हाथ, तो ये मेरा मैं भी मारूं तो वो वाली फील आएगी ना।
1: हाँ यार, और बगैर मुंह में कुछ लिया आप खाने के, अब जैसे तरबूज खा रहे हैं तो वो आवाज
0: बात सही की आपने, तो ये कुछ चक्कर वक्कर होता है। चलिए इस पर मजीद बातचीत करेंगे, लेकिन जनाब साथ साथ जो है ट्रैक्स भी मुझे प्ले करने हैं, नेक्स्ट ट्रैक की जानी बढ़ते हैं। और अस्मा हमारे साथ हैं, बेहतरीन आरजे, जबरदस्त आरजे, और इनको आप 101 पे सुनते रहते हैं।

0: It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: 100 FM
4: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
5: शराइत तो जवाबित लागू है।
6: FM 24/7 365
7: Active, yummy, adorable,
8: zabardast. Ye pyaar to suno yaar.

0: जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 आयाज अहमद के साथ, और साथ ही साथ मैसेजेस भी कर रहे हैं। और आज हमारे साथ जो है अस्मा हुसैन है, बेहतरीन जबरदस्त आर्टिस्ट, और इनको आज हमने मधु किया अपने शो के, और इनसे बड़ी बातचीत। अच्छा एक बात है, जैसे आरजेज आते हैं बहुत ज्यादा बोल रहे होते हैं, माशाल्लाह आप भी बोल रही होती लेकिन उतना नहीं बोली जितने दूसरे आरजेज बोलते हैं, क्या वजह? घर में भी ऐसी रहती हैं आप?
1: नहीं नहीं, मैं तो बहुत बोलती हूँ।
0: अच्छा अच्छा, शायद मेरी वजह से
1: आराम कर रही है। मेरी बाजी बोलती है भाई, सांस भी नहीं लेती है तो इतना बोलती है, फिर सांस लिए बगैर बस बोलती रहती है, बोलती रहती है।
0: सांस लिया करें, सांस के बगैर मुश्किल है गुजारा। साबिर भट्टी का मैसेज आया है, आज भाई लव यू, दिल खुश कर दिया आप दोनों ने, शहजादे हो आप। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, और देखिए आप टाइम का पता नहीं चल रहा, सिर्फ अब आप देखें 25 मिनट रह गए,
1: बिल्कुल पता ही नहीं चला टाइम का वाकई।
0: चलिए जरा, अच्छा आप कुछ थोड़े थोड़े जाते जाते जरा कुछ और बच्चों वाले सवाल, मियां जरीन ने भी पूछे खाने में क्या पसंद है, खाने में जो भी अकलाल का मिल जाता है टेस्टी हो पसंद है इनको, वैसे बताए।
1: वैसे मुझे चिकन बिरयानी बहुत पसंद है।
0: वो किसको नहीं पसंद?
1: वो मुझे सुबह शाम दोपहर मतलब जब मिल जाए मुझे खा लेती हूँ। माश की दाल बहुत पसंद है,
0: ठीक है, तड़के वाली।
1: हाँ जी
0: ठीक,
1: भिंडी बहुत पसंद है।
0: हाय हाय हाय, भिंडी क्या बात है। अच्छा जी, और इसके अलावा?
1: मीठे में मुझे कस्टर्ड और पुडिंग बहुत पसंद है।
0: वाह वाह बेहतरीन। चलो भैया जरीनून, अगर दावत का प्लान है तुम्हारा तो ये सारी चीजें बनवा लो तो आसमा जी आ जाएंगी। ठीक हो गया जनाब। अच्छा जी, और इसके अलावा फैंस का बताएं, फैन किस किस्म के होते हैं आपके, जो आपको बड़ा मतलब जो यादगार फैन कोई बताएं 11 सालों में?
1: 11 सालों में तो नहीं, आप अगर पीछे मेरा प्राइवेट चैनल पे जो थे ना वहां की मैं बात बताती हूँ, बहुत मजे की बात है। एक शुरू शुरू के दिन थे मेरे इसमें रेडियो पे, तो लाइव कॉल पे आके कह रहे हैं मुझे आपसे प्यार है।
0: मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। वाह वाह वाह।
1: और मैं इतनी कंफ्यूज, अब तो हम हैंडल कर लेते हैं, उस वक्त इतनी कंफ्यूज कि मैं चुप हो गई एकदम। मैं कह रही हूँ मैं बोलूँ क्या। वो तो शुक्र है कि हमारी प्रोग्राम मैनेजर मेरे साथ शो कर रही थी तो उन्होंने संभाल ली बात, वरना तो पता नहीं क्या होता।
0: नहीं नहीं, क्या होना था, मिट्टी पास आते हो चलो।
1: नहीं उस वक्त नहीं कर सकती थी, मैं शुरू शुरू के दिन थे, मैं क्या करती।
0: मुझे तो भाई, मुझे तो आके जो इस तरह मैसेज करते हैं, हमें हमारी भी इस तरह के एक्सपीरियंस है काफी, शादी से पहले तो बहुत ही ज्यादा थे, अभी भी है, लेकिन ये है कि उसको प्यार से टैकल करें, कोई घबराने की ज्यादा। वैसे ये कि वक्त के साथ इंसान को पता है, शो भी भाई तो इस चीज के चैंपियन है, वैसे माशाल्लाह मुस्कुरा रहे हैं इस बात के ऊपर, इनके तो बड़े कारनामे हैं।
1: अरे मैं तो फैन हूँ इनकी बहुत बड़ी।
0: भाई आपकी बहुत बड़ी फैन है, जो यहाँ तशरीफ फरमा है, और शो के बाद जना फोटो पक्की है आप लोगों के साथ।
1: बस
0: शो भी भाई जैसा आदमी वैसा, एक मैसेज बताऊं मैं आपको,
1: मैंने इनके सामने इतना सुना है, इनको इतना सुना है इनके शो का,
0: हालांकि इनको इनके घर में कोई नहीं सुन रहा, आप सुन रही हैं। अच्छा थम्स अप करती है इसके ऊपर, दिल की बात भूल गया।
1: ऐसा ना कहे, ऐसा ना कहे, मेरे सामने सुना
0: के भाई। शो भी भाई कमाल आदमी है, मैं कह रहा हूँ इनको, सिर्फ जो है ना रेडियो के लोग सुन रहे हैं।
1: इनका पता है, एक बार इन्होंने टॉपिक रखा था कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, आपकी कौन सी ऐसी ख्वाहिश है? तो मैंने इनके शो में कॉल करके कहा, मेरी ख्वाहिश है मेरा छोटा सा घर हो, और उसमें एक छोटा सा गार्डन हो, और एक छोटा सा स्विमिंग पूल हो। तो कह रहे अच्छा छोटे से घर में ये दोनों चीजें भी हो, और वो भी छोटी छोटी,
0: और स्विमिंग पूल कैसे इसमें सेट होगा? ये एक अच्छा सवाल किया शोभी भाई ने। चले जनाब, ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन साथ ही साथ गाने भी सुना। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ अस्मा जी के
1: फेवरेट। अरे ना देते आत्मा बाजी तो उधर चली गई, अब मैं आ गया। अच्छा, अब मुझे बात कर लें।
0: चलिए, ये कौन था भैया?
1: ये मैं थी ना।
0: ये आप है, माशाल्लाह। तो आपके पसंद का मैं एक ट्रैक आपको सुनाने वाला हूँ। अच्छा, वो है कैसे, वो है ऐसे।

0: है, क्या बात है जनाब, जबरदस्त ट्रैक, खूबसूरत,
1: मजा आ गया।
0: आपकी पसंद वाकई यार जबरदस्त है। एक आरजे की पसंद तो फिर डिफरेंट होनी भी चाहिए ना। अच्छा जनाब, मैं कहाँ कहाँ मैसेज पढ़ूं? दोस्तों जिनके मैं मैसेज नहीं पढ़ पा रहा, मैं माजरत चाह रहा हूँ, मगर आज इतने मैसेजेस हैं कि मैं खुद परेशान हो गया हूँ। मुश्क लैला ने इतनी देर से मैसेज किए हुए, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, और मजे की गेस्ट हैं, और वो कह रही, अच्छा इन्होंने एक सवाल पूछना था बहुत पहले से,
1: अच्छा
0: कि इतना मीठा कैसे बोलती है, चॉकलेट खाती है क्या है भाई, बताइए कैसे मीठा बोलती है।
1: मैं चीनी खा के आती हूँ ना,
0: चीनी मैंने मना किया इनको, अब जो चीनी कम खाएं सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा जनाब फरीन शहजादी के भी मैसेज आ रहे हैं भाई, बहुत शुक्रिया, और वो कह रही कि एक दिन जरूर आप कार्टून वाले उस प्रोजेक्ट में भी काम करेंगी
1: इंशाल्लाह।
0: और इसके अलावा नौरीन तौसीफ, मैं मात्रा चाहता हूँ, मैं बिल्कुल आपके मैसेज शामिल करता हूँ, वो शुरू से जो है प्रोग्राम सुन रही हैं, और डिनर भी टाइम होता है उनका, और बहुत शुक्रिया, और आपको भी बहुत सलाम, दिल की गहराइयों से वेलकम कह दिया उन्होंने।
1: वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया नौरीन तौसीफ।
0: अच्छा जनाब, और इसके अलावा संजू बहना और सबको सलाम दुआ कह दिए, जबरदस्त मौसम, आंधी तूफान भाई, फैसलाबाद में भाई आंधी तूफान हो रहा है इस वक्त, अल्लाह खैर करे। आपकी मियाँ तो वहाँ नहीं गए भाई, गए मैं,
1: हाँ जी वही,
0: बस ये था रीजन, नौरीन तौसीफ इनके मियाँ वहाँ आए, मैं
1: आंधी तूफान,
0: आंधी तूफान तो बनती है। अच्छा जनाब, और इसके अलावा माजमीन के मैसेज में शामिल कर ही रहा हूँ, और मैं क्या करूँ, मैं हर एक के मैसेज शामिल करने का सोच रहा हूँ, लेकिन सबको खुश करना बड़ा मुश्किल काम है। और मिसेज फारूक बहुत शुक्रिया, ऑसम गजल, आपका शो और आपकी गेस्ट दोनों सुपर डुपर, बड़ी मेहरबानी, आपकी आवाज की बहुत तारीफ की हुई है मिसेस फारूक,
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
0: अच्छा जनाब मनमोहन लाल कैसे हो, मोहन लाल सिंह कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, मोहन लाल उमरकोट से, अस्मा जी को भी सलाम, आज देर हो गई, कोई ऐसी बात नहीं जनाब, हम कौन सा स्कूल क्लास वाली बात मैं करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, देर आप सुन रहे हैं ये बड़ी बात है,
1: हम फाइन नहीं लगाएंगे आप,
0: हाँ कोई फाइन नहीं लगा, अस्मा जी की आवाज सुनकर अच्छा लग रहा है,
1: बहुत
0: प्लीज मैडम की आवाज सुना दे, बेटा आवाज ही सुना रही है और क्या, तुम्हें किसी दिन खड़ी खड़ी सुना देंगे ना, तुम्हें लग पता जाएगा। अच्छा जी भट्टी कह रहे हैं आपकी आवाज बहुत मीठी है अस्मा जी, आपके आपकी मुस्कुराहट, ओ माई गॉड, हो फुल टाइम फैन हो गया ये। अच्छा जी हाँ कहाँ हो तुम, बेहतरीन शहजादे शानदार, चले जनाब संजीदा जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब बातों बातों में मैं ये गाने जो हैं वो वैसे, अच्छा आप क्यूशीट किस तरह बनाती, मतलब आप क्या तरीका होता है क्यूशीट, मैं तो भाई ढूंढता रहता हूँ कभी यूट्यूब से कभी कहाँ।
1: नहीं मैं दरअसल हमारे पास एक घंटा होता है चलाने के लिए,
0: अच्छा।
1: दूसरे घंटे में हम फरमाइशें पूरी करनी होती है ना, तो इस वजह से इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती मुझे,
0: बस उनकी पसंद का है ना।
1: हाँ जी
0: चलिए जनाब, और इसके अलावा गयासुद्दीन बलबन कह रहे हैं मुल्तान में भी शदीद आंधी हो रही, बेटा तुम उधर से निकलने की करो ताकि वहाँ के लोगों पर जरा करम हो। बहरहाल जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जानिब, और ये गाना भी मैं आपको डेडिकेट कर देता
1: हूँ, बहुत शुक्रिया।

0: वाह
1: क्या बात है भाई, जबरदस्त।
0: मैं तो कह रहा हूँ आप खुद भी गाना शुरू कर दें। आवाज ठीक है। अच्छा खुद गाती हूँ। अच्छा बात आ रही होते गाना वो पीछे कर देते, खुद गा रहे होते हैं।
1: मैं करती हूँ ऐसे।
0: ऐसा करते हैं, बहुत बुरा करते हैं।
1: मैं
0: बंदा गाने में घूम बीच में अचानक आरजी की
1: नहीं नहीं मतलब पूरा बंद नहीं करती, उसके साथ साथ
0: माशाल्लाह आपकी आवाज तो माशाल्लाह अच्छी, लेकिन बात ऐसे होते हैं जिनको कोई बता नहीं रहा कि इनकी आवाज बहुत बुरी है और वो अच्छे भले गाने को ना नीचे करके और अपनी भोंडी आवाज बंदा कहता है यार मैं कौन सा गाना लगा
1: लेती मैंने आज तक नहीं
0: की। वाकई नहीं, आपकी तो माशाल्लाह आवाज बहुत खूबसूरत, आप अपने पे मत लीजिएगा ये बात।
1: नहीं नहीं मैंने वाकई नहीं किया ऐसा, हल्की सी मतलब सॉन्ग की आवाज तेज होती है, मेरी आवाज है।
0: कभी कभी करते हैं ना बात आती है हर गाने के साथ, ये
1: जो मेरा फेवरेट सॉन्ग होता है ना उसके साथ मैं हल्का
0: बहुत अच्छा काम करती हूँ। और ये मैं आज जितने सुन रहे हैं उनको बोलूंगा कि कभी ये हरकत नहीं करनी चाहिए, गाना चल रहा हो या तो पूरा खत्म हो जाए या उस गाने को बंद कर दें आप।
1: नहीं ऐसे लोगों को ये नहीं पता होता कि आरजे और सिंगर में फर्क है।
0: बहुत फर्क, बहुत फर्क,
1: बहुत फर्क है।
0: लेकिन नहीं साहब
1: नहीं,
0: बात ऐसे साथ साथ गा रहा हो बंदा कह रहे ना गाने का मजा आ रहा है ना आरजे की आवाज का मजा आ रहा है, क्या है चक्कर। अच्छा जी महानूर कह रही भाई आपको और मेहमान को वेलकम। भाई आपका आजकल कौन सा ड्रामा चल रहा है? अभी फिलहाल मेरा कोई ड्रामा नहीं चल रहा, मैं बहुत मासूम हूं, अभी रिकॉर्डिंग की तरफ चल रहे हैं तो जो उसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको थोड़ी दिनों में बताऊंगा। बट्टी कह रहे हैं आज भाई आप पूरी रात का प्रोग्राम अबे बंद नहीं करो यार बट्टी भाई, ऐसा नहीं करो यार, ये दो तीन घंटे एनर्जी होती है बस इसी में बंदा कर लेता है, उसके बाद बंदा बिल्कुल थक जाता है भाई। आप बताइए आप कितनी देर मैक्सिमम कितना आपने देर तक?
1: मैंने प्राइवेट चैनल पे 8 घंटे किया था।
0: माशाल्लाह सलूट है आपको, फिर तो गाने पे गाने लगा रही थी। आइए
1: नहीं मैं बोल रही थी लगातार और उसमें मतलब 14 अगस्त का शो था ना तो मैं लोगों को मतलब कॉल्स पे लेकर उनसे मिली नगमे भी सुन रही थी और मैं बोल भी रही थी लगातार, मैं बोल सकती हूँ बहुत ज्यादा बोल।
0: माशाल्लाह क्या बात है जनाब। चले जनाब इसी बात पर जो है जरा ब्रेक ले लेते हैं।
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: 100 FM
4: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
5: शरायत जवाबित लागू है।
6: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फूट इसका नौजवान, पाकिस्तान की 60% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेहरेज। मुनशियात फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार है। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ हैं जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स के एनएल वाजे मकसद और मजबूत इरादे के साथ मैदान

0: हाय क्या बात है जनाब। दोस्तों क्योंकि आज असम आई हुई है, गाने मैं आपको थोड़ी थोड़ी सुना रहा हूँ, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ टेम्पो वैसी रहे जैसे होता है हमारा। लेकिन सीरियसली असमा जी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ, आप जिस तरीके से आप शो करती हैं, यकीनन आप भी बड़ा लाइवली सा शो, इसी तरह ही रहता है आपके शो में भी?
1: बिल्कुल इसी तरह रहता है, और बहुत सॉन्ग्स भी मेरे ऐसे होते हैं ना ऊपर हाई
0: हाय बस,
1: क्योंकि टाइम ऐसा होता है ना,
0: छत पे बैठ के सुन रहे हैं।
1: हाँ।
0: अच्छा
1: जनाब, नहीं टाइम ऐसा होता है, लोग ड्राइविंग कर रहे होते हैं, अगर मैं सोता हुआ शो करूंगी तो ड्राइविंग करते करते लोग सो जाएंगे।
0: अब कोई और मैं बहुत मेलोडियस गाना थोड़ा सा सुनाता हूँ, उसके बाद जो है ना एंड में जो है ना आपसे कोई मैसेज वैसेज इस तरह का कोई बात करेंगे, और उसके बाद टाटा बाय बाय करेंगे, और ये खूबसूरत सा ये भी मैं आपको डेडिकेट करता हूँ।
1: बहुत शुक्रिया।

0: वाह वाह वाह जनाब, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। गाना भी पसंद किया आपने, वैसे वाकई दिल से कह रही हूँ, गाने वाकई डिफरेंट
1: है। नहीं, दिल से कह रही हूँ, सही।
0: बहुत शुक्रिया मिसेस फारूक, आपका भी शुक्रिया इतना है गाने पसंद करने का, शो को पसंद करने का। अच्छा जनाब, वक्त आ गया टाटा बाय बाय करने का। सबसे पहले अस्मा हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया, आप आई जबरदस्त आरजे, और आपकी बातों से भी मैंने अंदाजा लगा लिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलती हैं आप,
1: बहुत शुक्रिया।
0: और लाइवली यकीनन आपकी पर्सनालिटी भी बड़ी लाइवली है, जाते जाते कुछ कहना चाहें तो आप कह सकती हैं।
1: बस यही कहूंगी कि भाई अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल रखें। कहते हैं कि भाई लोग दिखावे के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं दूसरों के, अब जिसको जानते नहीं है आप तस्वीरें खींच रहे होते हैं कि भाई हमने इसकी हेल्प की, हमने इसकी मदद की, तो सबसे पहले अपने बहन भाइयों को देखा करें, अपने पड़ोसियों को देखा करें कि भाई उन्होंने खाना खाया है या नहीं खाया। कुछ लोग होते हैं जो बोलकर नहीं आपसे मांग सकते, कुछ कह नहीं सकते, तो उनकी आंखें पड़ा करें और लोगों का ख्याल रखा करें। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो आपको अपने लिए दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: वैसे भी आजकल वक्त भी ऐसा आ गया है कि जो सफेद पोश आदमी है ना, वो सबसे ज्यादा परेशान है। मैंने अपने शो में एक दो दफा पहले भी मैंने इसका जिक्र किया, दो लोग मजे कर रहे हैं, एक तो बहुत गरीब, वो तो मांग के भी खा सकता है, उसको लोग वैसे भी हेल्प करेंगे, भाई गरीब आदमी है, और उसको ना पेट्रोल की फिक्र, ना किसी चीज की फिक्र, ना टेंशन। और एक अमीर आदमी जिनके करोड़ों रुपए बैंक में रखे हुए हैं और वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और उनको पैसों की कोई कमी नहीं है, उनको 1000 रुपए लीटर भी हो जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ता। तो जो बेचारा मिडिल क्लास है या जो अपर मिडिल क्लास बंदा है, वो परेशान है भाई, परेशान। मैं कैसे मैनेज करूं,
1: बिल्कुल
0: वो कुछ बोल भी नहीं सक रहा, किसी को कह भी नहीं सक रहा कि भाई मैं इस परेशानी में हूं।
1: और आज के दौर में सिर्फ किसी की दुख सुन लेना जो है ना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ ये नहीं कि आप पैसों से किसी की मदद करें, किसी की परेशानी, किसी का दुख सुन भी लिया करें। कभी कहते हैं ना कि किसी के रास्ते से पत्थर हटाना भी नेकी है, तो ऐसे काम किया करें कि आपको लोग आपके बात भी याद रखें।
0: बहुत खूबसूरत, इसी बात पर ही अब हम चाहेंगे इजाजत। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट कि आप आई और अयाज अहमद को और अस्मा जी को दें इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, रब रखा, खुदा पामान।

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: Like us on facebook.com/fm247365
5: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM 247365.
4: FM 100's time check. It's 12 midnight.
5: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात FM 100 पर.
6: मेरा बादशाह हुसैन है. बड़ा हुजूम था तैबा की पहली मंजिल पे. बड़ा हुजूम था तैबा की पहली मंजिल पे. खड़े थे राह में करने को खास आम सलाम. चले हुसैन जो तैबा से करबला की तरफ. चले हुसैन जो तैबा से करबला की तरफ. जहां पहुंचते थे करता था वो मुकाम सलाम. जमीन मंजिल मकसूद ने कदम चूमे. जमीन मंजिल मकसूद ने कदम चूमे. फलक ने दूर से झुककर कहा इमाम सलाम. शाह वो जिन्हें सब शाह शाह कहते हैं. शाह वो जिन्हें सब शाह शाह कहते हैं. इमाम वो जिन्हें करते हैं सब इमाम सलाम. इमाम वो जिन्हें करते हैं सब इमाम सलाम. तमाम रात उन्हें भेजती रही हूरें. तमाम रात उन्हें भेजती रही हूरें. किसी के नाम दरूद और किसी के नाम सलाम. किसी के नाम दरूद और किसी के नाम सलाम. बढ़े जो करके वो सुए शाहे इनाम सलाम. बड़े जो करके
7: वसूले है नबी का मदीना तेरे बगैर.
4: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात FM 100 पर.
7: तेरे बगैर मदीना तेरे बगैर.
8: जी जनाब, वक्त 12 बजकर तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और सोरबर्दी साहब बस किसी भी लम्हे पहुंचने वाले हैं और इंशाल्लाह ताला 1 बजे तक फिर हम साथ हैं आपके. और ये ट्रांसमिशन जो है रोजाना आप मेरे साथ 11 बजे से 1 बजे तक सुन सकेंगे और 8 बारह तक ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा. और कल हमारे साथ होंगे रात को 11 बजे से 1 बजे तक हमारे साथ होंगे हाफिज मोहम्मद अली चिश्ती साहब. माशाल्लाह वो बड़े अच्छे सलाखा भी हैं और बहुत अच्छे मुकर्रर भी हैं. तो कल इंशाल्लाह वो कुछ बयान भी करेंगे और सनाखान भी करेंगे माशाल्लाह. उसके बाद हफ्ते को इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे रात को 11 से 1 बजे जनाब नदीम पंचतनी साहब. बड़े सीनियर बहुत सीनियर सनाखा है माशाल्लाह नदीम पंचतनी साहब. और आप अक्सर बेशतर हमारी ट्रांसमिशन में आपने रमजान में भी उसके अलावा रबी अव्वल में उसके अलावा सुनते रहते देखते रहते उनको वीडियो पर भी. तो इंशाल्लाह वो हफ्ते को हमारे साथ मौजूद होंगे 11 से 1 बजे तक. वो भी माशाल्लाह बयान भी और सनहानी भी साथ साथ करेंगे क्योंकि वो खुद भी माशाल्लाह बड़े अच्छे बहुत अच्छा बयान करते हैं. और रेडियो पर वो पहली बार बयान करेंगे मगर वैसे वो माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान करते हैं. बहुत मालूम अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी मालूम उनको दी है. और इंशाल्लाह इसके बाद फिर संडे जी हाँ इतवार का दिन. इतवार को इंशाल्लाह मुफ्ती मदनी रजा साहब जिन्हें आप अमूमन हमारे साथ देखते हैं तो इतवार को इंशाल्लाह ताला मुफ्ती मदनी रजा साहब हमारे साथ होंगे 11 बजे से 1 बजे तक. प्रोग्राम तारीख करबला ये प्रोग्राम की तरतीब जो है तो इतवार तक मैंने आपको ये तरतीब बता दी. अब कल परसों तरसों 3 दिन की तरतीब बता दी इंशाल्लाह. उसके बाद फिर नेक्स्ट तरतीब उसके बाद फिर आगे चलाएंगे. और तमाम हमारे मेहमान अल्लाह शुक्र तमाम बहुत मोहब्बत करते हैं और अकीदत भी है यकीनन उसी मोहब्बत अकीदत की वजह से वो ہمارے ساتھ مشن میں ہمارے ساتھ موجود بھی ہوتے ہیں, اور اب انشاءاللہ سہروردی صاحب کامران شیخ سہروردی انشاءاللہ ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کریں گے, اور اسی طرح آگے ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ جناب اشفاق بشیر صاحب بھی ہوں گے. آپ کو تو وہ بھی بڑے سینئر صنخا ہیں اور اکثر ہمارے ٹرانسمیشن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. جناب الحاج محمد شاہد قادری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ چاہ, ابرار حسین ہمارے ساتھ ہوں گے, اور اس کے علاوہ بہت سارے صنخا ہیں. جناب مومن تاجی صاحب بہت لائیو اور بڑا خوبصورت انداز ان کا پڑھنے کا بڑے اونچے شروع میں, تو مومن تاجی صاحب ان شاء اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے اس ٹرانسمیشن میں. یہ تمام ہمارے جتنے سینئرز اور خوبصورت آواز اور انداز رکھنے والے صنخا ان شاء اللہ تعالیٰ اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ دیتے رہیں گے. اور جناب ماشاء اللہ جی آپ کی محرم الحرام کی ٹرانسمیشن جو ہے کراچی ملتان حیدرآباد اینڈ ایبٹ آباد رحیم خان براہ راست نشر کی جاری. جی ہاں مجھے بھی خبر ملی ہے کہ ٹرانسمیشن ہماری جو ہے یہ سب آگے تک جاری ماشاء اللہ, تو جزاک اللہ بھائی آپ نے بھی خبر پہنچا دی, بہت اچھی بات ہے شجاعت مرزا. اور آپ تو ویسے بھائی ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہماری ہر ٹرانسمیشن میں ہر پروگرام میں شجاعت مرزا ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ماشاء اللہ, جزاک اللہ بھائی آپ کی اس انفارمیشن کا اور بہت بہت شکریہ, تھینک یو جزاک اللہ. اور اب ایک نوحہ ہم شامل کرتے ہیں.

ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਆਏਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਵੇਗਾ ਕਰਾਂਗੀ ਰਾਂਝਣਾ ਵੇ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਸਮਝ ਮੈਂ ਆਤੀ ਹੈ ਲੋਕੋ ਕੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਰਾਚੀ ਮੈਂ ਹਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਹੀਰ ਔਰ ਰਾਂਝਾ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਥੀ ਔਰ ਹੀਰ ਔਰ ਰਾਂਝਾ ਕੌਣ ਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਕੋ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਆਗੇ ਬੜ੍ਹਤੇ ਹੈ ਆਪਕੇ ਮੈਸੇਜਸ ਕੀ ਜਾਨਿਬ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੁਮਾ ਜੀ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਲਾਮ ਨਦੀਮ ਸੈਡ ਮੂਡ ਹੈ ਸੈਡ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਹੋ ਤੋ ਭਾਂਜੀ ਜੋ ਹੈ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਮੈਂ ਹੈ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਨਕੋ ਸਿਹਤ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਹਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਆਏ ਹੈ ਹੁਮਾ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂਰ ਛਾ ਗਈ ਸਹੀ ਕਹਾ ਦਿਲ ਪਰ ਲੱਗੀ था के की था कर करके दिल पर लगी ठा करके अच्छा ओके वो शेर जो है जरीन ने जो भेजा है यकीन मानिए जैसे कि मैंने आगाज में कहा ये कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझ पर ही है मुझे तो रट गया वो मत टटोला कीजिए मेरे लफ्जों से मेरी जात मेरी हर तहरीर का उनवान नहीं हूं मैं आपकी बात अच्छी लगी है नदीम जब ब्लड रिलेशन अच्छा इनके मैसेज का मैं थोड़े से हिज्जे करूंगा और उसके बाद पढ़ूंगा संजू आ गई हैं کہتے ہیں کہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ عافیت کی انگنت دعائیں ندیم سلامت رہیں خوش آمدید بزم شاعری میں اور یقین اور امید ہے بخیریت ہوں گی انشاءاللہ الحمدللہ جی اور مجھے بھی یقین ہے اور امید بھی ہے کہ آپ بھی بخیریت ہوں گی اور کہتے ہیں کہ بالکل آپ نے بہت خوبصورت اور سچی بات کہی ہے محبت خلوص اور ہمدردی ایک ایسی دولت ہے جو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی ان کا پورا میسج پڑھنے سے پہلے صرف اتنا آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں آر جے ایس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ریڈیو پر ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اچھی ہے بری ہے رائے آپ کی ہوتی ہے اس کا اظہار جب آپ کرتے ہیں نا تو یقین مانیے کہ ہمارا انرجی لیول جو ہے वो बढ़ जाता है आपकी पजीराई से और मैं तो वो इंसान हूं कि आप लोगों की तनकीद जो है उसको भी बहुत पॉजिटिव लेता हूं और तनकीद अगर ना हो तो इसका मतलब है कि आप तरक्की की राह की तरफ गामजन नहीं हैं तो बहुत खुशी हुई कि ये उसी हवाले से इन्होंने तहरीर किया है कुछ اور محبت خلوص اور ہمدردی ایک ایسی دولت ہے جو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ کئی گنا بڑھ جاتی ہیں یہ جذبہ معاشرے پر گہرے اور مثبت اثرات مرتب کرتا ہے مثبت سوچ بانٹنے سے دلوں میں کینہ اور کدورتیں ختم ہوتی ہیں سکون قلب دوسروں کی خوشی میں شامل ہونے سے انسان کو ذہنی سکون اور دلی خوشی ملتی ہے مضبوط رشتے لوگوں کے درمیان اعتماد بڑھاتے ہیں بہت پیاری باتیں کی ہیں آپ نے تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے موضوع کے حوالے سے ہی کچھ نہ کچھ کہا اور محبت بانٹنے سے بڑھتی ہے زندگی بہت مختصر ہے اس لیے کوشش کریں کہ اپنے دلوں میں محبت خلوص اور احترام کو جگہ دیں ایک خوبصورت لفظ ایک مخلص دعا اور ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کسی کے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی ہے بہت خوبصورت اور بہترین یہ پیراگراف ہے اس کو میں دوبارہ دہراؤں گا اور ضرور سنیے اور غور سے سنیے اور دل سے سنیے یعنی دل سے سننے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دل کے کان لگ گئے ہیں دل سے سننے کی بات انسان ایک مثال اس وجہ سے دیتا ہے کہ آپ کی توجہ کی تھوڑی سی ضرورت ہے کہ ایک خوبصورت لفظ ایک مخلص دعا سوچئے کبھی آپ کو کسی نے کچھ اچھے سے پیارے سے لفظ سے نوازا ہو یا آپ کے لیے تعریف کی ہو تو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے چاہے آپ وہ کہیں بس کر جا بھائی کیسی باتیں کر رہی ہو تم
मैंने तो आम सा सूट पहना है। अरे मैंने तो सिर्फ लिपस्टिक लगाई है, मेकअप तो मैंने किया ही नहीं है। लेकिन आप जब तारीफ कर देते हैं गो के, उनके सामने वाले के अल्फाज ऐसे होते हैं मगर दिल को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये खूबसूरत लफ्ज जो है, कभी सोचा है आपने दिन में कितने खूबसूरत लफ्ज आपने बोले हैं किसी के लिए? जरूरी नहीं है कि अपने महबूब को सामने बिठा लें और उसके लिए कहें। खूबसूरत लफ्ज जो है वो आप अपने दोस्तों के लिए भी कह सकते हैं। आप अपने मतलब लड़कों की हवाले से चले मैं पहले बात करता हूं कि दोस्त अहबाब में जाते हैं, चाय पीते हैं, इधर उधर की बातें और ये और वो, किसी दोस्त को देखकर गौर से देखें, वो कहेगा भाई क्या देख रहा है यार, तुमने शर्ट बड़ी प्यारी पहनी हुई है, गो के आपको अच्छी खास नहीं लगी है लेकिन आपने ऐसी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर ये कह दिया, अबे बहुत पुरानी है यार, मैली भी हो रही है लेकिन अच्छी है यार, कहां से ली थी? अबे यार वो बस मैं तारे उड़ गया था ना तो वहां से बस खरीद दी थी, अच्छी लगी थी। अच्छा अच्छी लगी थी, इसका मतलब तुम्हारी पसंद अच्छी है भाई। हाँ बस यार अब तो बहुत पुरानी होगी, मैं तो ऐसे रफ पहनता हूँ। अच्छा ये बात गुजर गई लेकिन जब वो वहां से उठ के जाएगा ना तो उसके दिल में एक ये बात जरूर आएगी यार, खुश होगा वो, दिल मुस्कुराएगा चाहे मामूली सा मुस्कुराए। तो ये खूबसूरत लफ्ज संजू की ही मैं मैसेजेस पढ़ रहा हूँ और उसी पर हल्की फुल्की चर्चा कर रहा हूँ। और एक मुखलिस दुआ, मुखलिस दुआ किया कभी किसी के लिए? मुखलिस दुआ बिल्कुल की होगी आपने, इतना जरूर मैं जानता हूं कि जितने भी सुनने वाले हैं मुखलिस दुआ कम से कम दुआ तो कर सकते हैं ना यार। लेकिन ये भी अच्छे दिल जो होते हैं ना ये ही मुखलिस दुआ कर सकते हैं, वरना मैंने जैसे कहा कि मुआशरे में जो बीमारी फैली हुई है जलन की, जलन से अभी मैंने सिर्फ जलन का जिक्र किया है तो बहुत सारी चीजें, तो ये जलन की जो बीमारी है ना ये मुखलिस दुआ नहीं होने देती। मुंह पर तो आपको कह देंगे अरे माशाल्लाह यार बहुत प्यारी लग रही हो तुम, तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, लेकिन दिल से मुखलिस दुआ नहीं निकलती। माशाल्लाह तो मुंह से कह दिया आपने, दिल से माशाल्लाह कहने अल्लाह ताला इसको नजर ना लगे। आज तुमने सूट बहुत अच्छा लगा, ये कलर तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, ये वो वाली हैं खूबसूरत लफ्ज। तो मुखलिस दुआ जो है वो भी इंसान को करनी चाहिए और आपको भी करनी चाहिए। एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी के दिल का बोझ हल्का कर सकती है। हाय अल्लाह जी क्या बात कर दी आपने। अच्छा इसका मैं प्रैक्टिकली आपको एक बात भी बताता हूँ, ये मैं कई दफा अपने पुराने शोज अगर आपको याद हो मुस्कुराहट के हवाले से मैं बहुत बातें कर चुका हूँ, लेकिन इनकी बात मेरे दिल को ज्यादा छू गई क्योंकि मेरे दिल से ताल्लुक रखती है ये बात मुस्कुरा

प्यारा छू गई, क्योंकि मेरे दिल से ताल्लुक रखती है ये बात मुस्कुराहट वाली, कि एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी के दिल का बोझ हल्का कर सकती है, और ये हकीकत है, यकीन मानिए। जब हम ऑफिस से, मैं मर्दों की एक मिसाल दे रहा हूं, कि जो घरों से काम काज के लिए निकलते हैं, तो सारा दिन काम काज किया और जब शाम को घर वापस लौटते हैं, तो सबसे बड़ा जो एक जंग होती है ना, वो ये होती है कि कई दफा तो इस तरह होता है कि ऑफिस में काम करके इतनी थकावट नहीं होती जितनी हमें ऑफिस से घर जाते हुए होती है। उसकी वजह यह है कि बेतहाशा ट्रैफिक, रोडों का बुरा हाल, बेहंगमी, हर कोई भागने की सोच में, तो उसमें जिस तरह चाहे आप बाइक चला रहे हैं, चाहे आप गाड़ी चला रहे हैं, चाहे आप रिक्शे में बैठे हैं, चाहे लड़कियां जो हैं वो ज्यादातर उन्होंने अपने ऑफिस से घर पहुंचने के लिए वैन लगाई होती है, चाहे वो वैन में बैठी हों, तो जो उकताहट, कबाहट, परेशानी, उस रास्ते में थकावट होती है, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अच्छा, इसमें बेतहाशा लड़ाइयां भी होती हैं, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मुस्कुराहट के हवाले से बता रहा हूं कि आपको अगर किसी बाइक ने आगे जाने के लिए हल्का सा, मतलब कोई टचिंग हो गई आपका, मतलब एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि पीछे से किसी ने बाइक मार दी आपकी, या आपकी बाइक कहीं आगे जाकर किसी गाड़ी के बम्पर पर लग गई, और या कोई आपके साइड से गुजरता हुआ आपको थोड़ा सा धक्का लग गया बाइक के ऊपर या गाड़ी को, तो ऐसे में उस परेशानी में ज्यादातर लोगों को गुस्सा आ जाता है, और उस गुस्से में जो है वो लड़ाइयां भी हो जाती हैं। तो मैंने एक अमल मुस्कुराहट के हवाले से ये किया कि कोई इस तरह मुझे अगर हल्का सा धक्का लग गया, तो मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा, तो मैंने मुस्कुरा दिया। मेरी मुस्कुराहट से सामने वाले का गुस्सा पानी पानी हो गया। मैं इस तरह के, मेरे साथ एक बार नहीं कई बार वाकयात हो चुके हैं। गाड़ी के बम्पर पर टायर लग गया, गाड़ी वाले बोले देख कर नहीं चलता, भाई माजरत, मुस्कुरा कर देख लिया उसको, वो उसका सारा गुस्सा ठंडा हो गया। तो ये तो मैंने आपको ये बात, ये एक मिसाल मुस्कुराहट के कमाल जो है वो मैंने आपको बताए, कि जब इंसान गुस्से में है, थका हुआ है, परेशान है, और ऐसी हालत में गुस्सा ज्यादा आता है, तो आप मुस्कुरा कर अगर सामने वाले को देखते हैं, तो उसका दिल ऑटोमेटिकली नरम पड़ जाता है। और जब आप किसी की परेशानी में देखें, किसी को उदास देखें, उसको दिलासा देते हुए मुस्कुराएं, तो क्या बात है। मुस्कुराहट सदकाए जारिया भी है, आपको ये भी बता दूं। अच्छा, ये बातें तो हमने कर ली आम फहम, लेकिन उसके साथ साथ मुस्कुराहट अगर महबूब की हो या आपकी पसंदीदा शख्सियत की हो, तो वो तो कमाल है जनाब। उस वक्त तो दिल के साथ साथ इर्द गिर्द का माहौल भी बहुत अच्छा लगने लगता है, चाहे वो बहुत खराब हो। एक बार फिर दोहराते हैं, अपने दिलों में मोहब्बत, खलूस और एहतराम को जगह दें, एक खूबसूरत लफ्ज, एक मुखलिस दुआ और एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी के दिल का बोझ हल्का कर सकती है। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते, तो कम से कम उसके दिल को दुखने से बचाएं। और दुखने से बचाने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका ये है, खामोशी इख्तियार कर लें, क्योंकि मोहब्बत वो रोशनी है जो दिलों को जोड़ती है और इंसानियत को खूबसूरत बनाती है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये इनकी तहरीर यहीं पर खत्म होती है, और उसके बाद इनके बहुत प्यारे प्यारे से इंतखाब हैं, जो कि हमने शामिल शो करने हैं, कुछ ही देर में करते हैं। अयूब लाला कहते हैं, कोई पाबंद मोहब्बत ही बता सकता है एक दीवाने का जंजीर से रिश्ता क्या है। कोई पाबंदे होगा, जेर होगी इस पर, कोई पाबंदे मोहब्बत ही बता सकता है एक दीवाने का जंजीर से

रिश्ता क्या है, वाह वाह वाह। मोहब्बत में जंजीर नहीं एक कच्चे धागे की डोर भी हो तो वो भी नहीं टूटती है जनाब, हमारे इरफान मेमन साहब आ गए हैं। कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सुनियो, शो जैसा शो का पैटर्न है ऐसा ही सलाम भेजा है सुनियो। बहुत खूब थैंक यू वेरी मच। बाइक पर हूँ सुनियो फ्रेंड्स के साथ। अरे वाह, आप चला रहे हैं या फ्रेंड्स चला रहे हैं? एहतियात कीजिए, अल्लाह ताला आपको खैर आफियत के साथ रखे। तमाम फैमिली और मुश्क को स्पेशली सलाम का है। अरे भाई, हमारी मुश्क जो है इस शो की रौनक जो है, कल वो गैर हाजिर क्या रही, कल तो खैर हमने उनको बहुत याद किया ही था, लेकिन आज देखते हैं कि वो आती हैं या नहीं आती, और उनको बेतहाशा याद किया जा रहा है। और अलीमुद्दीन यूसुफजई साहब हमारे आ गए हैं और सलाम के बाद कहते हैं मुंतखब गजल जो है वो हमेशा भेजते हैं, और उनके पसंदीदा जो शायर हैं वो मोहीउद्दीन हमदम साहब हैं, लेकिन इनकी उर्दू में कहीं आगे पीछे कुछ हो जाता है जिसकी वजह से कभी कभार सही आ जाती हैं, लेकिन हम फिर भी मैं आपकी मोहब्बत में पढ़ देता हूं, चाहे उसका सर पांव टांग सब तोड़ दूं। कहते हैं कि मेरी यादें भूलने वाले किस दिल किसी से बहलाओ किस से बहलाओगे, मेरी यादें भूलने वाले दिल किस से बहलाओगे, आईना गर धुंधलाया तो चेहरा देख ना पाओगे, मेरी यादें भूलने वाले दिल किस से बहलाओगे, आईना गर धुंधला तो चेहरा देख ना पाओगे, अश्क तुम्हारी आंखों में और जब्त की तलकीन मुझे, मुझको ऐ समझाने वाले खुद को क्या समझाओगे, धोखा खुद को देने वाले अश्क छुपाकर हंसने वाले, याद मेरी आएगी तुम्हें जब कैसे अश्क छुपाओगे, बाजीए इश्क नहीं आसान हो जाता है जिनका जया, हार ही अपनी रोने वालों जीत पे भी पछताओगे, हमदम का दिल तोड़ गए तुम तन्हा उसको छोड़ गए तुम, राह में गर मिल जाए कहीं वो नजरें कैसे चुराओगे। सबको उन्होंने सलाम कहा है, अलीमुद्दीन यूसुफजई साहब एफबी एरिया कराची से, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से मैसेज का। अच्छा जनाब, संजू भरपूर चीजें लिख के भेज रही हैं, कुछ इक्तबास भी हैं वो भी शामिल इस शो करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है चर्चा काफी हो गई है, मेरी बातों से आप ज्यादा बोर ना हो जाएं, लिहाजा मेरा ख्याल है कि मुझे एक अदद ट्रैक की जानिब जाना चाहिए। तो ये ट्रैक जनाब हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन यूसुफजई साहब और इरफान मेमन और मेमन कजन्स जितनी भी हैं उन सबको, और सायरा मेमन सलीम मेमन सबको डेडिकेट करेंगे। समाप्त फरमाइए।

वेलकम बैक कहेंगे स्वयं आप सबको, और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको बता दें कि मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सोनियो। स्लीपलेस नाइट में कहूंगा आपको खुशामदी। आपका और मेरा साथ है 3 बजे तक, और 3 बजे तक ये महफिल सजाई हुई है। बात कर रहे हैं कुछ दिल की, सुन रहे हैं कुछ प्यारे प्यारे से गीत, और शामिल शो कर रहे हैं कुछ खूबसूरत से इंतखाब जो शायरी की सूरत में, इक्तिबास की सूरत में आप हमें भेज रहे हैं। और अमीन कह रहे हैं कि रुखसारे आंचल के सालों की कसम, उल्फत का नजारा किसी दोस्त से कम ना था, खुशबू तेरे आने की किसी कली की मुस्कुराने से कम ना थी। मैं जानता हूं कि तुम गैर हो, लेकिन न जाने क्यों तुझ में अपनायत सी महसूस होती है। यूं तो जहां में और भी हंसी होंगे, लेकिन मेरी जाना तुम सा तो शायद कोई भी ना हो। क्या बात है अमीर भाई, बहुत खूब। नदीम भाई कैसे हैं? सलाम के बाद कह रहे हैं कि दिल पत्थर का है, अच्छा होता है जब दिल नरम हो तो लोग अल्फाजों से रुला देते हैं। सबा गुल कह रही है, हाय हाय हाय। देखिए, दिल तो पत्थर का किसी का ही नहीं होता। ये हालात, ये छुरी से तेज, तलवार से तेज धार के जो लफ्ज हैं, जो दिलों को चीर देते हैं, और चीरने के बाद दिल से जो खून निकलता है वो दिल के इर्द गिर्द जम जाता है और पत्थर की सूरत इख्तियार कर लेता है, इसलिए दिल पत्थर का हो जाता है। और हम ये समझने लगते हैं कि हमारा दिल पत्थर का हो गया, मगर दिल पत्थर का नहीं होता। कोई ना कोई तो आएगा जो इसको पिघलाएगा, जमे खून को, और जब ये पिघलेंगे तो जाहिर है फिर दिल फिर धड़कने लगेगा। और आगे बढ़ते हैं जनाब। कहती हैं कि इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद भी पता नहीं मेरे दिल पत्थर का नहीं बन रहा। प्लीज मेरे लिए दुआ करें, किया करें कि अल्लाह मेरी मुश्किल आसान करे। सबा गुल कह रही, अगर इतनी तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद भी आपका दिल जो है वो धड़क रहा है, तो यानी कि आप बहुत प्यारी इंसान है। जीती रहो बहन। और तेरी फुरकत में गुजर गए जो हसीन लम्हात, ये हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ की जानिब से इंतखाब है। तेरी फुरकत में गुजर गए जो हसीन लम्हात, उनकी लज्जत बाकरा को हम भूले ही कब थे। शमा जीस्त अब बुझ भी जाए तो क्या मलाल, तुझसे बिछड़ कर हम जिए ही कब थे। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब नौरीन। और हमारे मिर्जा साहब आ गए हैं जनाब गुज्जर खान से, और उन्होंने भी तमाम सुनने वालों को आदावर्स का है, तस्लीमात जनाब। और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत कलाम मनकबत प्ले किया आपने, हमेशा सलामत रहे आमीन। और जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बात आपने शेयर की, हसास एहसास या हसास के हवाले से। इसमें कोई शक नहीं कि हमको सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। सज्जाद अली का गाना भी उनको पसंद आया है। मिर्जा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सच की जो राह होती है ना, वो बड़ी खतरनाक, बड़ी मुश्किल होती है। इस पर चलना आसान नहीं है, लेकिन हमारा माशरा जो है, जो जिस बीमारी का शिकार हो चुका है, मैं इसको बीमारी कहता हूं, बीमारी इस शो में कह रहा हूं,
جو بگاڑ ہے معاشرے کا، یہ بیسیکلی ایک بیماری کی صورت میں، کینسر کی صورت میں بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. سوچیں اس بارے میں بھی. اور نورین بہنا، تمہارا یہ والا میسج تو ہم نے پڑھ لیا، اور ہمارے علیم الدین صاحب نے جو ہے وہ شکریہ ادا کیا ہے، ان کی منتخب غزل جو ہے وہ ہم نے شو میں شامل کی. اچھا جناب، ابھی ہم ایک اور بہت ہی پیاری سی گیت کی جانب جا رہے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ سب کو بھی پسند آئے گی. اور ہمارے کیا نام ہے، ہمارے ایوب لالا خاموش ہو گئے، مشک آئی نہیں ہے. سنجو کے میسیجز اور ان کے بہترین انتخاب ابھی موجود ہیں ہمارے ساتھ شو کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن ایوب لالا آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں، کہاں غائب ہیں؟ آپ کی جو ڈیڈیکیشن ہے وہ اس کے بعد ہم ضرور چلائیں گے، لیکن ابھی اپنا پسندیدہ ایک ٹریک جو ہے وہ آپ سب لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو بھی پسند ہے، یہ سنیے.

वेलकम बैक कहेंगे तेरे प्यार में दिल हार के। ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। मैसेजेस आपके आ रहे हैं 3636 पर। अच्छा अभी अरे मुश्क आ गई हैं जनाब, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और कह रही शुरू से साथ हूं अपने इंतखाब के साथ। बहुत उदास लग रहे हैं, अल्लाह रहम करे। तेरे प्यार में दिल हार के उदास लग रहा हूं आपको। आप आ गई हैं तो आप खुश हो गए हम है कि नहीं। अच्छा भाई इनका इंतखाब भी आया है और इससे पहले मैं वैसे जा रहा था उनके इंतखाब। अरे वाह भाई वाह क्या बात है। अच्छा इनके मैसेज आए हुए हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम डैशिंग, क्या हाल है। कल जिस भी दोस्तों ने याद किया आप समेत दिल से थैंक्स कहती हूँ। कुछ इंतखाब भेज रही हूँ, शो में शामिल कर लें। बिल्कुल कर रहे हैं और टाटा बाय बाय नहीं चलेगा। कहती हैं कि एक ही शख्स को माना है सहीफे की जैसा, सहीफे जैसा, एक ही शख्स को माना है सहीफे जैसा और खुदा ने वो उतारा है किसी और तरफ। हाय हाय, आसमां चांद सितारे हैं सभी मेरी तरफ और मेरी आंख का तारा है किसी और तरफ। हाय हाय हाय भाई क्या बात है मोश, जबरदस्त। मेरी जिंदगी का वर्क वर्क है यूं सजा हुआ, मेरी जिंदगी का वर्क वर्क है यूं सजा हुआ, सरे इब्तिदा सरे इंतहा तेरा नाम दिल पे है लिखा हुआ। सरे इब्तिदा सरे इंतहा तेरा नाम दिल पे लिखा हुआ। वाह वाह, जिन लोगों ने रिश्ता निभाना होता है वो अपनी मर्जी से मौजूद रहते हैं, मिन्नतें तरले नहीं करने पड़ती, वो नफा नुकसान वाली डायरी साथ उठाए नहीं फिरते। ये तो बड़ी अच्छी बात की हमने, ये फैक्ट है। फिर हमारे अहमियत देना या नजरअंदाज करना कोई मायने नहीं रखता, वो बस हमारे साथ होते हैं धूप हो या छांव हो, बिन मांगे बिन कहे क्योंकि वो हमसे कभी ना खत्म होने वाली मोहब्बत करते हैं। फैक्ट है। जिन लोगों ने रिश्ते निभाना होता है वो अपनी मर्जी से मौजूद रहते हैं। वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी बात है भाई, ये बड़ी अच्छी बात है। और आप आई हैं हमें बहुत खुशी हुई और उम्मीद करता हूं कि आपकी गैर मौजूदगी में यानी कि आपके मैसेज किए बगैर सब ने आपको बेतहाशा याद किया है और उम्मीद करता हूं कि सब लोग बहुत खुश हुए होंगे। और नौरीन कहती हैं अच्छा इनका इंतखाब आया है तो इंतखाब अभी हम शामिल करते हैं, मैं पहले मैसेज जरा देख लूं। और हुमा कहती हैं कि नदीम आज का शो बहुत हार्ट टचिंग है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, 100 में से 100 मार्क दिए, सो स्वीट। ये आपका ये अंदाज भी मुझे अच्छा लगता है मासीबाय, आपके ये अंदाज और किसी का नहीं है। कहते हैं जिगर मैं सुन रहा हूँ, मुझको मना लें वो नन्नी सी जान नाराज है, हो गई है। अल्लाह पाक सबागुल की तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। और उसके बाद ये मेरा ख्याल इनका मुश्किल मैसेजेस पढ़ने से पहले का मैसेज था और उसके बाद इनका आया है कि गुड जबरदस्त, आपके आने से सब लिसनर्स खुश हो गए हैं। मुश्क उम्मीद करता हूं कि आप इख्तिताम तक साथ होंगी। और जनाब ये कहां गया, सभा का मैसेज हो गया। अमीन भाई भी आज फुल फॉर्म में है और कहते हैं हम भी शिकस्ता दिल हैं परेशान तुम भी हो, हम भी शिकस्ता दिल हैं तुम भी परेशान हो, अंदर से रेजा रेजा मेरी जान तुम भी हो, कोई भी गीत। अच्छा जी, अंदर से रेजा रेजा मेरी जान तुम भी हो और डेडिकेशन जनाब हो जाएगी। और जनाब
ایک اور انتخاب آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر ایک گیت کی جانب جائیں گے تاکہ آپ کی ڈیڈیکیشنز جو ہیں وہ بھی پوری ہو سکیں. میں چاہتا ہوں ہماری ملاقات میں کوئی خلل نہ آئے. میں چاہتا ہوں ہماری ملاقات میں کوئی خلل نہ آئے, اس لیے سوچا ہے کہ اس بار تمہارے لیے گجرے لاؤں. چوڑیاں رہنے دوں, وہ بہت شور کرتی ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ اس شام صرف ہمارے دلوں کی دھڑکنیں بولیں. میں چاہتا ہوں جب تم آؤ تو ہوا بھی آہستہ چلے, درختوں کے پتے بھی سرگوشیوں میں بات کریں, چاند اپنی روشنی نرم کر لے اور ستارے فاصلے سے ہماری خوشی کو دیکھتے رہیں. تمہارے ہاتھوں میں چوڑیاں ہوں گی تو ان کی کھنک پر خاموش لمحے کا راز چرا لے گی. میرے گجرے کی خوشبو خاموش رہتی ہے, وہ کسی سے کچھ نہیں کہتی, بس دل کے قریب آ کر محبت کی گواہی دیتی ہے. میں تمہارے بالوں میں وہ گجرا سجا دوں گا اور پھر دیر تک تمہیں دیکھتا رہوں گا, جیسے کوئی مسافر برسوں بعد اپنی منزل کا چراغ دیکھ لے. نہ کوئی جلدی ہوگی, نہ کوئی شور, نہ دنیا کی باتیں, نہ زمانے کے قصے, صرف تم ہوگی, صرف میں ہوں گا, اور ہمارے درمیان وہ سکون جس کی دعائیں میں نے کئی راتوں سے مانگی ہیں. میں چاہتا ہوں تم مسکراؤ تو وقت رک جائے, تم نظریں اٹھاؤ تو شام سنور جائے, اور تم کچھ نہ بھی کہو تو تمہاری خاموشی محبت کی مکمل نظم بن جائے. گجرے کی خوشبو میں لپٹی وہ ملاقات میرے نصیب کی سب سے حسین شام ہوگی, جہاں ہر لمحہ عبادت لگے گا اور ہر سانس شکر کا ایک حرف. پھر جب واپسی کا وقت آئے گا تو میں ہوا میں بسی اس خوشبو کو سنبھال لوں گا, کیونکہ ملاقاتیں ختم ہو جاتی ہیں مگر ان کی مہک دل میں بہت دیر تک رہتی ہے, اور اس دن تم جان لو گی میری دلربا کہ میں تمہارے لیے گجرے کیوں لایا تھا. اس لیے نہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں, بلکہ اس لیے کہ سچی محبت ہمیشہ خوشبو کی طرح ہوتی ہے, خاموش, نرم, مگر ہمیشہ دل میں رہ جانے والی ہے.

एक मैसेज पढ़कर मुझे हंसी आ गई और उस पर कहूंगा जीती रहे जीती रहे संजू जीती रहे। अच्छा भाई शनाया आ गई हैं और सलाम कह रही हैं सबको। और कैसे हैं आप और आपके बाबूजी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बाबूजी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। 100 की पूरी फैमिली को शनाया का प्यार भरा सलाम और बेहतरीन इंतखाब सबके लिए उन्होंने भेजा है। कहती हैं पता नहीं क्यों मेरे आंसू अल्फाज बन जाते हैं, पता नहीं क्यों मेरे आंसू अल्फाज बन जाते हैं, न जाने क्यों रिश्तों के खून सफेद हो जाते हैं। कभी सोचता हूं कि दिल भी कितना अजीब होता है, जो सब कुछ सहकर भी किसी से शिकायत नहीं करता। आंसू जब लफ्ज बन जाएं तो समझ लेना खामोशी ने अंदर कहीं बहुत शोर मचा रखा है। और रिश्ते जब रंग बदल लें तो एहसास होता है कि कुछ कुर्बतें सिर्फ वक्त तक ही सच्ची होती हैं। दिल टूटता नहीं बस आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाता है और इंसान हंसते हंसते अंदर से खाली हो जाता है। आखिरी दो सतरें बहुत ही खतरनाक किस्म की थी। दिल टूटता नहीं फिर बस आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाता है और इंसान हंसते हंसते अंदर से खाली हो जाता है। फैक्ट है। शनाया बहुत ही खतरनाक लिखा। अच्छा भाई हमारी बहन फरहीन शहजादी कहती हैं कि छोड़ जाने पर परिंदों की मजम्मत की हो, हमने देखा है कभी पेड़ ने हिजरत की हो। उम्र छोटी सी मगर शक्ल पे झुर्रियां इतनी, ऐन मुमकिन हो कभी हमने मोहब्बत की हो। वाह। और शब खैर कह दिए इन्होंने। क्यों भाई खैरियत है। और आपने बहुत खूबसूरती से पढ़ा है। खुश रहें शनाया जीती रहो मेरी बहन। और आगे बढ़ते हैं आगे ये बढ़ते हैं जनाब के एक खूबसूरत से इक्तबास के हवाले से मेरे जहन में चंद अशार आ रहे थे तो वो मैं पहले इक्तबास की चंद सतरें पढ़ूंगा और उसके बाद आपको जो मेरे जहन में दो चंद अशार आए हैं वो आप लोगों की नजर करूंगा। अनीस कह रहे हैं कि वेरी नाइस, वाओ वेरी नाइस संजू, आपका इंतखाब और एने का रीड करने का अंदाज, माहौल को लूट लिया आपने तो। अनीस भाई बहुत शुक्रिया, लगता है मेरे भाई के दिल पर लगी है ये। और मैंने कहा था कि जो दिल से सुनेंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा। जिगर बहुत खूब सलामत रहे, ये अयूब आफरीदी भाई कह रहे हैं। और कादिर बख्श बलोच कहते हैं कि अने भाई मुश्क आ गई हैं, अब आपकी उदासी खत्म हो जाएगी। अरे मोहतरम सिर्फ मेरी नहीं हम सब की। असल में ये जो नौजवान हैं ये बड़े शोखो चंचल होते हैं, इनकी तबीयत बड़ी मजेदार किस्म की होती है, तो इनकी नोक झोंक प्यार मोहब्बत शरारतें तो वो एक अलग माहौल बनाती हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सबको भी इंतजार होगा और आप सबकी भी उदासी दूर होगी। और जनाब उस जानेब आऊंगा जिसकी आप लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं और सिग्नेचर जो है वो हम बाद में पढ़ लेते हैं। दिल चाह रहा है कि दोबारा पढ़ूं ऐसे, शो के आखिर में पढ़ेंगे। चलो ये एक इंसान की जो जिंदगी है इस हवाले से उसमें ऐसा वक्त जरूर आता है या ऐसी ख्वाहिश वो जरूर उसका दिल रखता है कि वो इस तरह के माहौल में हो जिसका इस तहरीर में जिक्र है।
تو خیر ابھی آپ کو ایک اور ٹریک کی جانب لے کر جا رہا ہوں, اور یہ ٹریک جو ہے وہ ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے امیم کی جانب سے عمر و باپ کو, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی پسند آئے گا.

रूह है मन। मेरा मन करता है कि मैं आपसे हर रोज नए अल्फाज में मोहब्बत का इजहार करूं। लुगत तमाम हो जाए तो नई जबाने तख्लीक करूं और जुबाने थक जाए तो नए खामोश इशारों से आपको पुकारूं। मैं चाहती हूं कि आप हर पल मेरी चाहत का नया जाविया देखें, यहां तक कि मोहब्बत अमर हो जाए और मेरी हस्ती आपके ही वजूद में फना कर रह जाए। सुनो ए रूहे मन। सुनो ए रूहे मन। बहुत खूब बहुत खूब। और जनाब मैसेजेस आपके आ रहे हैं कि चाहे स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड करें आप 3636 पर। आपका और मेरा साथ है 3 बजे तक और वक्त का आज मुझे तो पता नहीं चला, खैर बड़ी तेजी से गुजर रहा है। और हमारे अच्छा नाम हमारे बहुत सारे भेज दिए हैं, हमेशा सिग्नेचर नाम्स हैं ये अलीमुद्दीन साहब के, तो मैं बहुत कम पढ़ रहा हूं। अयूब लाला कहते हैं कि जिंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो, जिंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो, ये वफा की बातें ख्यालों में रहने दो, हकीकत में आजमाने से टूट जाते हैं दिल, हकीकत में आजमाने से टूट जाते हैं दिल, ये इश्क दोस्ती और मोहब्बत किताबों में रहने दो। बहुत खूब अयूब आफरीदी भाई, अच्छा लगा। और उफ हो उफ, इस कदर दुखियारे सॉन्ग क्या हुआ है, लगता है शिद्दत से यादों ने घेर लिया है। अच्छा खासा रोमांटिक माहौल था, पता नहीं कौन है जो मोहब्बतों को बीच में ले आया। ये कह रही है मुश्क, रोमांटिक तो चल रहा है, अभी और रोमांटिक करते हैं हम। और आखिरी आखिर में जो है वो इक्तबास जो है मैं दोबारा रीड करूंगा ताकि दिल जो है जोर जोर से धड़कना शुरू हो जाए मोहब्बत करने वालों के। आज की बात माजरत के साथ, हर बड़े की नसीहत पर कान ना धरे। अहमक भी अच्छा माजरत के साथ उन्होंने कहा, इसीलिए माजरत के साथ लिखा था इन्होंने कि हर बड़े की नसीहत पर कान ना धरे, अहमक भी बूढ़े हो जाते हैं, उम्र का एहतराम करें लेकिन वजाहत तलब करें। अच्छा इसमें माजरत की बात नहीं है, इस बात को मैं कई बार बता चुका हूं, मगर आपकी इस आज की बात के हवाले से, आपकी माजरत के हवाले से बता दूं कि बूढ़े इंसान में और एक बुजुर्ग इंसान में फर्क होता है। और आपने बहुत अच्छा लिखा कि अहमक भी बूढ़े हो जाते हैं और वो बूढ़े ही कहलाते हैं, बुजुर्ग कभी नहीं कहलाते हैं।